मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। प्रातः के

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड्स हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं, आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः 6 बजने को है। हिंदी में समाचार आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी

0: एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में देशगान।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में ओम व्यास व साथियों के सुर में प्रस्तुत है ये अगली भक्ति रचना।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में अब आप आनंद लीजिए विनोद राठौर व साथियों के स्वर में इस भक्ति गीत का।

0: श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गांधी जी की शिक्षा नीति विषय पर डॉक्टर राजरानी शर्मा का आलेख। वाचक स्वर आभा गुप्ता का है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महान राजनीतिज्ञ होने के साथ समाज सुधारक भी थे। मानवीय करुणा से ओतप्रोत बापू जीवन के हर क्षेत्र में विशिष्ट दृष्टिकोण रखते थे। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का मूल मंत्र था, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे शोषण विहीन समाज की स्थापना की जा सके। बापू का विचार था कि शिक्षा के अभाव में स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। एक सुविचारित, दूरदर्शी और राष्ट्रहित चिंतक के रूप में सोचते हुए महात्मा गांधी का मानना था कि मेरे प्रिय भारत के बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें 3H का सार्थक उपयोग हो। शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी के हेड, हैंड और हार्ट सशक्त बने। सर्वांग की उन्नति करने वाली शिक्षा बच्चों को स्वावलंबी बनाए और बच्चे देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। गांधी जी भारतीय शिक्षा प्रणाली को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे, क्योंकि हमारी शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन रही है। गांधी जी ने शिक्षा को व्यवसाय परक होने पर विशेष बल दिया है। बुनियादी शिक्षा के विषय में बापू के सुचिंतित विचार राष्ट्र को उनकी महत्वपूर्ण देन हैं। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई। इसके संबंध में बुनियादी शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता बापू ने की तथा शिक्षा शास्त्री विनोबा भावे, काका कालेलकर और जाकिर हुसैन सहित अनेक विद्वानों ने बुनियादी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। बच्चों को 7 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित हो। अन्य सभी योग्यताओं और गुणों का विकास हो, साथ ही बच्चों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बालक द्वारा चुनी हुई हस्तकला पर विशेष शिक्षा

0: शिक्षा दी जाए। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार भी मानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना। बापू शिक्षा को देश के प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, इसलिए उन्होंने 7 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की नीति को स्थापित करना आवश्यक समझा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के रूप में गंभीरता से लागू किया गया। शिक्षा के बारे में गांधी जी का दृष्टिकोण व्यवसाय परक शिक्षा को प्रधानता से लागू करना रहा था। बापू का विचार था कि भारत जैसे गरीब देश में शिक्षार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ धनोपार्जन भी कर लेना चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उनका दृढ़ विचार था कि शिक्षा ऐसी हो जो नव युवकों को बेरोजगारी से मुक्त कर सके। गांधी जी शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य को स्वावलंबी होना मानते थे। वहीं उनका मानना था कि शिक्षित मनुष्य के व्यवहार में संस्कृति अवश्य परिलक्षित होनी चाहिए। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपना मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की ज्योति आज भी प्रज्वलित है, प्रासंगिक है।
1: अभी आपने चिंतन में सुना गांधी जी की शिक्षा नीति विषय पर डॉक्टर राजरानी शर्मा का आलेख। वाचक स्वर आभा गुप्ता का था। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। आज सुनिए बरसात के मौसम में पौधरोपण विषय पर सोहन सिंह से सामयिक चर्चा।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में फलदार पौधों की पौधरोपण करें। पौधरोपण के लिए बरसात का मौसम अधिक उपयुक्त रहता है। इस मौसम में रोपे गए पौधे कम हो जाते हैं। भूमि के अनुसार पौधरोपण के लिए पौधों का चयन करना चाहिए। जहाँ पर ढलान वाली भूमि हो, वहाँ पर ढलान के विपरीत दिशा में ऐसे पौधों का रोपण करें जिनके फल नवंबर दिसंबर तक तोड़ाई योग्य तैयार हो जाते हों। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ग्रीष्म ऋतु में इनकी पत्तियाँ नीचे गिर जाती हों, जैसे आंवला, सीताफल, करौंदा, इमली, बेर। फल वृक्षों के अतिरिक्त ऐसी भूमि में बान की पौधे, यूकेलिप्टस, सुबबूल, बांस, महुआ का भी रोपण कर सकते हैं। पौध रोपण के लिए उचित दूरी पर गड्ढे खोदने के साथ साथ सीढ़ी नुमा नालियाँ भी बना देनी चाहिए, जिससे पौधों के पास अधिक समय तक पानी थलई में एकत्रित न हो। पानी के बहाव का वेग कम होगा, मिट्टी क्षरण भी रुकेगा। यदि मिट्टी की गहराई पर्याप्त है, पानी अधिक समय तक रुकता हो, वहाँ पर आम, कटहल, अमरूद का रोपण करें और बाद में उन्हें कलमी पौधों में परिवर्तित करें। पौध रोपण सही समय पर करें, जिससे बारिश का अधिक से अधिक लाभ पौधों को मिल सके। पौधों की बढ़वार के अनुसार पौधों की दूरी निर्धारित की जाती है, जैसे आम, कटहल, महुआ, आंवला। ये पौधे बड़े आकार के होते हैं और इनकी दूरी 10 मीटर रखी जाती है। इसी प्रकार कम आकार के बनने वाले पौधे नींबू वर्गी, अमरूद, सीताफल, इनकी दूरी 6 मीटर रखी जाती है। यदि निर्धारित दूरी से पौध कम दूरी पर रोपण करेंगे तो डालियां आपस में मिल जाएंगी और इन्हें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलेगा। फलस्वरूप बगीचे के किनारे के पौधों को छोड़कर शेष पौधों में फलन न की बराबर होगी। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई न मिल पाने के कारण फल अधिक झड़ेंगे, कीट और बीमारियों का प्रकोप अधिक होगा। इसलिए पौध रोपण निर्धारित दूरी पर ही करनी चाहिए। पौध रोपण के बाद गड्ढों की भराई के लिए अच्छी पकी गोबर की खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में

0: साथ ही कोई भी कीटनाशक चूर्ण, फेनवाल, फालिडाल या नीमयुक्त दवा मिलाकर अवश्य गड्ढों की भराई करें, जिससे पौधों में दीमक लगने की संभावना न रहे। पौधरोपण के लिए क्यारियों में एक या दो बार बदला हुआ पौधा ही होना चाहिए। ऐसे पौधों में फाइब्रस रूट्स, जिन्हें झकड़ा जड़ कहते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है और ये जल्दी ही भूमि से पोषक तत्व अवशोषित करने लगते हैं, जिससे जड़ों का जमाव शीघ्र होता है। जलग्रहण क्षेत्रों में बीजू पौधा ही लगाएं, बाद में उन्नत किस्म के पौधों में परिवर्तित करें। बीजू पौधों में टैप रूट पाई जाती हैं, जो काफ़ी गहराई तक जाकर भूमि में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं, जिससे पौधों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। वर्षा का मौसम समाप्त होने के बाद पौधों की नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पौधों के बीच में उगे खरपतवारों को निकालते रहें, जिससे पौधों में कीट और बीमारियों से बचत होगी। साथ ही खरपतवार भूमि से पोषक तत्व भी अवशोषित करते हैं, जिससे मुख्य पौधे कमजोर हो जाते हैं। पौधरोपण के 4-5 वर्ष तक पौधों के बीच में अधिकांश भूमि खाली रहती है। ऐसी भूमि में अंतर्वर्ती फसलें सब्जी के रूप में उगाकर आय का स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: कृषि चर्चा में अभी आपने सुनी बरसात के मौसम में पौधरोपण विषय पर सोहन सिंह से सामयिक चर्चा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। श्रोताओं, आज की एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, बारिश ग्वालियर में तय कोटे से कम होने के कारण तिगरा बांध में केवल और केवल 48 दिन का पानी शेष रह गया है। इसलिए कल से नगर निगम ने यह तय किया है कि ग्वालियर में एक दिन छोड़कर नगर निगम के पानी की सप्लाई की जाएगी। कैचमेंट एरिया में बारिश कम होने से इस नगर निगम की जो परिषद है उसने इसकी मंजूरी दी है। तो आप सभी ध्यान रखिए कि कल से पानी एक दिन छोड़कर एक दिन सप्लाई किया जाएगा। अब कुछ रोजगार सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। पहली सूचना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPPSC ने कम्बाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज UPPCS के 500 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 है। आवेदनकर्ता के लिए जनरल OBC EWS कैटेगरी में ₹125 शुल्क रखा गया है, SC ST में ₹65 और सभी PH कैंडिडेट्स के लिए ₹25 शुल्क रखा गया है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद ने एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी के 410 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2026 है। ये सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रखा गया है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसरो ने ही साइंटिस्ट इंजीनियर के 92 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 17 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। इसमें अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट टाउन प्लानर के 39 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC ने जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर E1 पोस्ट के लिए 52 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभिन्न पदों और विभिन्न अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से न्यूनतम और अधिकतम आयु अलग अलग है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन

0: नेशन यानी NBE ने वेरियस ABC ग्रुप्स के 53 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई 2026 है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अधिकतम आयु 27 से लेकर 35 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 242 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 है। आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अधिकतम आयु अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना ने SSC एंट्री के 275 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 रखी गई है। कैंडिडेट्स को 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच में जन्म होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़न AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार और उसके ठीक बाद प्रातः 7 हिंदी में समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् पारितम्। राज्यसभया एतत् विधेयकम् ह्यः पारितम्। लोकसभया तु बुधवासरे एव तत् अनुमोदितमासीत्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति। एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः 10 कारावासः 10 कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितीकर्तुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता। तथैव आरक्षिस्थानके सूचनापञ्जीकरणदिनाङ्काद् 2 अपराधानाम् अन्वेषणं भवेत्। अभियोगपत्रप्रस्तुतेः 3 च निर्णयो भवेत्। पूर्वं सदने विधेयकं निवेद्य डॉ. जितेन्द्रसिंहः अवदत् यत् एतत् विधेयकं राष्ट्रस्य विद्यार्थिनां युवजनानां च हितसंरक्षणे प्रशासनस्य दृढप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादयति। अनन्तरं सदनम् अद्य प्रातः 11 स्थगितम्। संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकमपि पारितम्। लोकसभया ह्यः राज्यसभया तु बुधवासरे एव एतत् अनुमोदितमासीत्। अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवदेव वैधानिकसंरक्षणं प्रदास्यते। अथ राष्ट्रगीतस्य अपमानः च दण्डनीयः अपराधः भविष्यति। एतेषाम् अपराधानां कृते अधिकतमः 3 कारावासः अर्थदण्डः उत वा उभयमपि विहितं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् विश्वसनीय परीक्षाव्यवस्थायाः निर्माणार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यरतमस्ति। सामाजिकसञ्चारपटले प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्यसन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगतेषु दशकेषु केन्द्रीयराज्यप्रशासनाभ्यां प्रश्नपत्राणां गोप्यताभङ्गस्य समस्या निरन्तरम् अनुभूयते। अनेन च विद्यार्थिनां भविष्यं सङ्कटापन्नम् अभवत्। सः अवदत् यत् एतत् सर्वं मनसि निधाय सम्पूर्णे देशे केन्द्रे राज्येषु च शिक्षाव्यवस्थायाः परीक्षाव्यवस्थायाश्च परिष्कारः अत्यावश्यकः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः मन्त्रिमण्डलीय सुरक्षा समित्युपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन् उपवेशने पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य

0: तत्सम्बद्ध स्थितेः तथा विभिन्न मन्त्रालयैः विभागैश्च कृतानाम् उपायानां समीक्षा कृता। उपवेशनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री घटनाक्रमाणां नियमितानुवीक्षणाय नागरिकानां हितसंरक्षणसम्बद्धानाम् उपायानां शीघ्रकार्यान्वयनाय च एकीकृतसमन्विततन्त्रस्य निर्माणम् आहूतवान्। उच्चतमन्यायालयेन राष्ट्रराजधान्यां सद्य एव जातेषु छात्रविरोधप्रदर्शनेषु पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगेन आहतानां जनानां समुचितचिकित्सायै दिल्ली प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं जंतर मंतर इत्येतस्मिन् स्थले दिल्ल्याः अन्येषु स्थानेषु च प्रदर्शनरत छात्रेषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोग सम्बद्धां याचिकां शृणोति स्म। श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह पुरुषाणां दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदक ही पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदक ही सह दशम स्थानम अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और पिछली सरकारों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लुकतुब दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में

विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाले लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलिरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सिल्वा प्रभु थिरुमानन में भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले प्रातः 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रातः 7:20 पर आज आप सुनेंगे गांधी चर्चा, प्रस्तुति होगी तुलिका शर्मा की। फिल्म संगीत प्रातः 7:30 से सुना जा सकेगा। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम जिसमें हम आपकी फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, सुनिए प्रातः 10:05 से। समाचार प्रभात प्रातः 8:00 और मॉर्निंग न्यूज़ प्रातः 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी।

प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे बेगम अख्तर से उनकी गाई कुछ गजलें। इस घंटे की खास खबरें प्रातः 8:58 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे अली अहमद खान से सारंगी वादन राग गुर्जरी तोड़ी में प्रातः 9:30 पर। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण प्रातः 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। दोपहर बाद 12:58 पर 2:58 पर आप सुन सकेंगे इस घंटे की खास खबरें। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी।

आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। सायं 6 बजे एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा। सायं 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल हमारे केंद्र से। आज चर्चा के विषय होंगे मुंशी प्रेमचंद्र जयंती, साथ ही जैविक खेती, टिकाऊ खेती और तिल की उन्नतशील प्रजातियां विषय पर बीएस कंसाना से सोहन सिंह की बातचीत।

रात्रि 10 बजे श्रोताओं आप सुन सकेंगे। संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाहियों का प्रसारण। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकेगा। आज का कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। परीक्षा कानून संशोधन विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ में स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण का करेंगे वितरण। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद धार भोशाला परिसर से लगी दरगाह की जमीन पर आज होगी जुमे की नमाज। और प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय, आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के संसद से पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक माफिया और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नए कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधान और कड़े किए गए हैं। पेपर लीक जैसे मामलों की जांच तय समय सीमा में होगी और फास्ट ट्रैक अदालतों में जल्द सुनवाई की जाएगी। ये विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूहों का क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे प्रदेश के स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। वे करीब 284 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया जाएगा और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद धार के ऐतिहासिक भोशाला परिसर से लगी दरगाह की जमीन पर आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। अदालत ने राज्य सरकार को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने तय स्थान का निरीक्षण किया और सफाई सहित जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर में देश का पहला ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। नई दिल्ली में इस योजना के लिए केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच कल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में दूर संचार उपकरणों का निर्माण होगा और

0: रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों से हुई चर्चा में करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना भारत को दूर संचार उपकरणों के वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: ग्वालियर सेक्टर हमारा बहुत संभावना का सेक्टर, जब भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के MOU करते हुए हमारे टेलीकॉम सेक्टर में अपनी इंडस्ट्रियों को आकर्षित कर रही है। इसमें भारत सरकार की जो अपनी ग्रांट है उस पॉलिसियों के अंतर्गत हमारे राज्य की तरफ से भी बड़े पैमाने पर रोजगार पर कामों को बढ़ावा देने की दृष्टि से सभी प्रकार की पॉलिसियों के बलबूते पर हमने एक आकर्षक पैकेज बनाया है, जिसके आधार पर जो माननीय सिंधिया जी ने बताया 3,500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आज कंपनियों ने अनाउंस किया है और आज तो MOU हुआ है। हमारे लिए डबल एक तरह से निवेश भी और रोजगार ट्रिपल मिला है।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में मतदान संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार कुल 71.44% मतदान दर्ज किया गया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली, जिसमें युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता भी शामिल रहे। मतदान समाप्त होने के बाद EVM और अन्य चुनाव सामग्री कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और धार से सांसद सावित्री ठाकुर ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राष्ट्रपति को अक्टूबर में धार में आयोजित होने वाले वीरांगना रानी दुर्गावती जन्मोत्सव और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान रानी दुर्गावती के शौर्य, राष्ट्रभक्ति और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन की रूपरेखा से भी राष्ट्रपति को अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नए उद्योगों में स्थानीय किसानों और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार फसल उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने पेप्सिको इंडिया की खाद्य प्रसंस्करण इकाई और निर्माणाधीन वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। उज्जैन में श्रावण माह के दौरान महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे के अनुसार प्रतिदिन 80,000 से अधिक यात्रियों के स्टेशन पहुंचने की संभावना है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर, टिकट जांच कर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जरूरत के अनुसार विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा और उज्जैन स्टेशन पर एक अतिरिक्त इमरजेंसी ट्रेन भी तैयार रखी गई है। स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा मिल सके। प्रदेश में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बालाघाट पुलिस की पहल को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अभियान के दौरान जिले के 1,204 स्कूलों के करीब 1,25,000 विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति की शपथ ली। वहीं 5,00,000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अभियान में भागीदारी की। इस उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बालाघाट पुलिस को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया। भोपाल में कल से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन करीब 2,000 यात्रियों ने इन बसों से सफर किया। फिलहाल शहर के 3 मार्गों पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों का किराया सामान्य सिटी बसों के बराबर रखा गया है, जो 7 से 40 रुपए तक है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में और बसें शुरू की जाएंगी। नई बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं, CCTV कैमरे और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण अगले 2 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 2 और पदक अपने नाम किए हैं। भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, वहीं सीमा कालीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।

आपको समाचार संक्षेप में। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के भानपुरा के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में टीबी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम के पवारखेड़ा स्थित आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र में कल आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के लिए एड्स पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान 16 दिनों तक चले जन जागरूकता अभियान का कल आगरमालवा में समापन हो गया। जबलपुर के कटंगी के सम्मति विद्या मंदिर में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। अशोकनगर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखेंगे। नर्मदापुरम में सावन की शुरुआत में ही झमाझम बारिश ने इटारसी और आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। वहीं खंडवा जिले में कल दोपहर बाद से लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज रखने के निर्देश दिए गए हैं। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत संचालित कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल ई दक्ष केंद्र इंदौर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन EIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20:35 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए गांधी चर्चा, प्रस्तुति है तुलिका शर्मा की।

0: गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 31 अक्टूबर 1929 को यंग इंडिया में प्रकाशित भौतिक और नैतिक गंदगी के संबंध में बापू के विचार, जो उन्होंने हरिद्वार के विशेष संदर्भ में लिखे थे। बापू के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जबकि नैतिक मूल्यों और हमारे परिवेश में स्वच्छता की बात के प्रति हर कोई विचारवान और सतत प्रयासरत है। आइए सुनते हैं बापू के विचार।
1: इसमें कोई शक नहीं है कि हरिद्वार और दूसरे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान एक समय सचमुच पवित्र थे। उन स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और उनकी परंपरागत लोकप्रियता से पता चलता है कि वे स्थान किसी समय धर्म की संशुद्धि और संरक्षण के गढ़ थे। धर्म के प्रति मेरे मन में सहज प्रेम है और मैं प्राचीन संस्थाओं का हमेशा आदर करता हूँ और उनका औचित्य सिद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इन तीर्थ स्थानों में आदमी की बनाई किसी भी चीज में मुझे कोई आकर्षण दिखलाई नहीं दिया। पहली बार जब सन 1915 में मैं हरिद्वार गया था, तब मैं वहाँ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष पंडित हृदयनाथ कुंजरू के अधीन एक स्वयंसेवक की तरह गया था। इस कारण मुझे बहुतेरी बातें गहराई से देखने और कई लोगों के निकट परिचय में आने का अवसर मिला था, अन्यथा ऐसा घनिष्ठ परिचय पाना शायद कठिन होता। मैं बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर और बड़ी श्रद्धा से प्रेरित होकर हरिद्वार गया था, लेकिन जहां एक ओर गंगा की निर्मल धारा ने और हिमाचल के पवित्र पर्वत शिखरों ने मुझे मोह लिया, वहां दूसरी ओर इस पवित्र स्थान पर मनुष्य के कामों से मेरे हृदय को कुछ भी प्रेरणा नहीं मिली। मैंने हरिद्वार में देखा कि वहां नैतिक तथा शारीरिक दोनों ही तरह की मलिनता है और यह स्थिति देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। पहले की भांति आज भी धर्म के नाम पर गंगा की भव्य धारा दूषित की जाती है। अज्ञानी और विवेक शून्य स्त्री पुरुष गंगा तट पर जहां ईश्वर दर्शन के लिए ध्यान लगाकर बैठना चाहिए, वहां मल मूत्र त्याग करते हैं। इन लोगों का ऐसा करना प्रकृति, आरोग्य तथा धर्म के नियमों का उल्लंघन करना है। तमाम धर्म शास्त्रों में नदियों की धारा, नदी तट, आम सड़क और आमदरफ्त के सभी दूसरे स्थानों को गंदा करने की मनाही है। विज्ञान शास्त्र सिखाता है कि मनुष्य के मल मूत्र आदि का नियमानुसार उपयोग करने से बहुत बढ़िया खाद तैयार की जा सकती है। आरोग्य शास्त्री कहते हैं कि उक्त स्थानों में मल मूत्र आदि का विसर्जन करना मानव समाज की घोर अवज्ञा करना है। ये तो हुई आलस्य और अज्ञान के कारण फैलने वाली गंदगी की बात, लेकिन धर्म के नाम पर जानबूझ कर भी गंगा जल गंदा किया जाता है। विधिवत पूजा कराने के लिए मुझे गंगा तट पर ले जाया गया। जिस पानी को लाखों लोग पवित्र समझकर पीते हैं, उसमें फूल, सूत, गुलाल, चावल, पंचामृत वगैरह चीजें इस विश्वास से डाली गई कि ये एक पुण्य कार्य है। मैंने इसका विरोध किया तो उत्तर मिला कि ये तो युगों से चली आ रही एक सनातन प्रथा है। इस सब के अलावा मैंने ये भी सुना है कि शहर की गंदी नालियों का गंदा पानी भी आकर नदी में मिलता है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ये तो हरिद्वार की भौतिक गंदगी की राम कहानी हुई। वहां की नैतिक गंदगी इससे भी कहीं बढ़ चढ़कर है। हरिद्वार में रात दिन होने वाले व्यभिचार की जो बातें मैंने सुनी हैं, उसका उल्लेख मैं इन स्तंभों में नहीं कर सकता। इतना सब होते हुए भी कोई कारण नहीं कि हरिद्वार एक आदर्श तीर्थ स्थल न बनाया जा सके। प्राचीन धर्म संस्कृति का पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से स्थापित शैक्षणिक संस्थाएं हरिद्वार में हैं। इनके सिवाय हरिद्वार में और उसके आसपास अनेक धनाढ्य महंत भी रहते हैं। ये सब या इनमें से कोई एक ही संस्था अगर चाहे तो हरिद्वार को थोड़े ही समय में आदर्श तीर्थ स्थान बना सकती है। जिस सार्वजनिक सभा में मैंने हरिद्वार की भौतिक और नैतिक गंदगी के संबंध में अपना दुख प्रकट किया था, उसके सभापति ने प्रतिज्ञा करके मुझे आश्वासन दिया है कि वो अपने गुरुकुल द्वारा, जिसे हरिद्वार लाया गया है, इन सुधारों के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। कुछ स्थानीय कार्यकर्ता भी इस परिस्थिति को सुधारने के लिए यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये आकांक्षा उनके अनुरूप है। ईश्वर करे ये पूरी हो। अगर गुरुकुल के विद्यार्थी अपने विद्याभ्यास के साथ साथ धर्म और देश की इस तरह की सेवा भी करेंगे तो उनके लिए वो सबसे सच्ची शिक्षा होगी।
0: गांधी चर्चा में आज आपने 31 अक्टूबर 1929 को यंग इंडिया में प्रकाशित भौतिक और नैतिक गंदगी के संबंध में बापू के विचार सुने। गांधी चर्चा का समापन करते हैं इस भक्ति गीत से।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रस्तुति थी तुलिका शर्मा की। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, एक ऐसे कलाकार जिन्हें 1970 के दशक में जन्मे लोग 80, 90 या आज की जनरेशन, जिसे हम जेंजी कहकर बुलाते हैं, वो भी उनके गीत सुनना पसंद करती है। ऐसे कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। आज मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर आज का कार्यक्रम डेडिकेटेड है मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ गीतों पर। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और आपकी मृत्यु आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को 55 वर्ष की उम्र में तब के बम्बई, आज के मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। आपकी ख्याति भारत के सुप्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर्स में एक है, एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कन्यादान के इस गीत से। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, गायक है मोहम्मद रफ़ी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: रवि साहब ने हिंदी के साथ साथ बहुत सारी भारतीय भाषाओं में गाने गाए, जैसे उर्दू, पंजाबी, कोंकणी, असमी, भोजपुरी, ओडिया, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मगही, मैथिली और इसके अलावा इंग्लिश, पर्सियन, अरेबिक, सिन्हला, मॉरिशियन, क्रियोल और डच की भाषाओं में भी आपके 7,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए गए। इससे पहले जब मैं रफ़ी साहब के गाने सुनता था, या आप भी सुनते होंगे, तो शायद ही आपको भी पता होगा कि इतनी भाषाओं में रफ़ी साहब ने गाने गाए। आपको बताना था, इसीलिए जब मैंने भी पढ़ा तभी मुझे मालूम चला कि इतनी भाषाओं में भी उन्होंने गाने गाए हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यासा से इस गीत को। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है SD वर्मन का, गायक है मोहम्मद रफ़ी।
3: Malay, Jampeya.

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर उनके गाए कुछ गीत। श्रोताओं, जब मोहम्मद रफ़ी छोटे थे, जब वो 7 साल के हुए, तो उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का वैसे तो संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था, और जब रफ़ी छोटे थे तो अपने भाई की नाई की दुकान पर जाया करते थे। रफ़ी का काफ़ी वक्त वहीं गुजरता था और उस दुकान के पास से एक फ़कीर गाना गाते हुए गुजरा करते थे, तो मोहम्मद रफ़ी हमेशा उसका पीछा किया करते थे और उसकी नकल

उतारा करते थे और उसी आवाज़ में गाने की कोशिश किया करते थे। धीरे धीरे आसपास के लोगों को रफ़ी जी की आवाज़ पसंद आने लगी और वो केवल उनकी आवाज़ को सुनने के लिए ही उनके भाई की दुकान पर आने लगे। जब उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने उनके प्रति संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखा तो उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेजा। एक बार आकाशवाणी, उस समय ऑल इंडिया रेडियो, लाहौर में प्रदर्शन करने के लिए प्रख्यात गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल वहां आए और मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी उनको सुनने के लिए गए हुए थे, लेकिन बिजली गुल हो जाने के कारण सहगल जी ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया। आयोजकों ने भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी का गाने गाने का मौका दिया और 13 वर्ष की उम्र में उन्हें अपना सार्वजनिक प्रदर्शन करने का पहला मौका मिला। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, ने भी उनको सुना और काफ़ी प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का नौता दिया और इस तरह से उन्होंने पहली पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए श्याम सुंदर के लिए 1944 में अपना पहला गाना गाया। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली से इस गीत को लिखा है HS बिहारी ने, संगीत है OP नैयर का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर उनके गाए कुछ गीत। श्रोताओं, आप बात करें मोहम्मद रफ़ी को प्राप्त पुरस्कारों की, तो आपको एक बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन 3 बार, सुर सिंगर 1 बार और अन्य 4 पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे गाने लिखे और उन बहुत सारे गानों में से आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा, आर.डी. वर्मन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में फिल्म द ट्रेन से ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है।

0: उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कॉन्डोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं, और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर से इस समय सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर आप सुन रहे हैं उनके गाए कुछ गीत, और हम आपको बता रहे हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। साल 1965 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से आपके गायन कला के लिए सम्मानित किया। इसके साथ ही 2016 में आपकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। 31 जुलाई यानी आज ही के दिन 1980 में 55 वर्ष की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में आपकी मृत्यु हो गई। तो आइए सुनते हैं आपकी पुण्यतिथि पर आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म प्रतिज्ञा से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गायक हैं मोहम्मद रफ़ी।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।
1: शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
4: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
3: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
3: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा, बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से

0: 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
1: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्ता लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी। अमर

0: मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं बेगम अख्तर। हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर की गाई कुछ गज़लें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर से उनकी गाई कुछ गज़लें।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर से उनकी गाई कुछ गजलें। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी।
1: आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 के संसद से पारित होने का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक माफिया और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले में आयोजित प्रदेश स्तरीय ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रूपये के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 284 करोड़ रूपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर में देश का पहला ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपतियों से हुई चर्चा में करीब 3,500 करोड़ रूपये के निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल कुल 71.44% मतदान दर्ज किया गया। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई। प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण अगले 2 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है।

और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना, समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं ग्वालियर के लिए एक बेहद ही खास खबर के साथ, और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं अनुराग शर्मा। खबर है कि ग्वालियर को मिला है देश का पहला टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग जोन, यानी कि ग्वालियर में अब बनने जा रहा है देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मौजूदगी में गुरुवार को दिल्ली में एक समझौते पर विज्ञान भवन में हस्ताक्षर किए गए हैं। एक MOU साइन हुआ है। 350 एकड़ में यह आकार लेगा और इसकी लागत 500 करोड़ रुपए के लगभग होगी। इसका जो टोटल निवेश है वो 9000 करोड़ के आसपास का होगा। इसमें 10000 युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका जो बंटवारा रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि 51% मध्य प्रदेश का और 49% भारत सरकार का इसमें सहयोग रहेगा। प्रथम चरण में इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, HFCL, तेजस नेटवर्क जैसी लगभग 2000 करोड़ की प्रारंभिक निवेश किए जाएंगे, जिसको बाद में बढ़ाकर 9000 करोड़ के आसपास किया जाएगा। और इसमें कुल सृजित रोजगार प्रारंभ में 10000 और बढ़कर 14000 तक किए जा सकते हैं। तो ये ग्वालियर और आसपास के पूरे चंबल इलाके के लिए एक बेहद ही सकारात्मक खबर है। श्रोताओं, इसके साथ ही नगर निगम ग्वालियर ने कम बारिश के चलते ग्वालियर में पानी की जो सप्लाई होती है नगर निगम के द्वारा, उसको 2 दिन में एक बार यानी एक दिन छोड़कर एक दिन करने का निर्णय लिया है। यह सप्लाई कल से एक दिन छोड़कर एक दिन प्रारंभ की जाएगी, यानी कल यदि पानी आएगा 1 अगस्त को, तो फिर 2 तारीख को पानी नहीं आएगा, ऐसे फिर 3 को आएगा। ये निर्णय ग्वालियर में हुई कम बारिश के चलते लिया गया है। हम लोग भी आपसे अपील करते हैं कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी खर्च कीजिए, शावर की बजाय बाल्टी का उपयोग कीजिए। यदि आपको आदत है कि आपको ब्रश करते समय नल खुला रखना है, तो उस आदत में थोड़ा परिवर्तन करिए, क्योंकि वो गलत है। ब्रश करते समय जितने पानी की आवश्यकता उतना उपयोग में लीजिए, फिर उसके बाद नल को बंद कर दीजिए, और संभव हो तो भारत सरकार की पहल कैच द रेन में ज़रूर जुड़िए। कैच द रेन कैंपेन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को बचाकर धरती तक पहुंचाना है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको बढ़ाना है, जिससे आज जो हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उसको समाप्त किया जा सके। श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के दिवस के ऊपर। आज 31 जुलाई को हम मना रहे हैं, मतलब मनाया जाता है मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन, यानी आज उनकी जयंती है। एक लेखक जिसने कहानियों के नायक ही बदल दिए, राजा महाराजा नहीं, किसान मजदूर और आम इंसानों को अपनी कहानी का नायक बनाया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके लिए लिखते हैं। हिंदी के युगांतर साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न, अंतरप्रांतीय ख्याति के हिंदी के प्रथम साहित्यिक, प्रतिकूल परिस्थितियों से निर्भीक वीर की तरह लड़ने वाले, उपन्यास संस्कार के एक छन्न सम्राट, रचना प्रतियोगिता में विश्व के अधिक से अधिक लिखने वाले मनीषियों के समकक्ष, आप मुंशी प्रेमचंद की आज जयंती है।

0: आपका जन्म 31 जुलाई को हुआ था। आप एक हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास और साहित्यकार हैं। आपकी कुछ कहानियाँ, कुछ नहीं सारी कहानियाँ कहूँगा, कुछ कहानियाँ हमने बचपन में पढ़ी थी और वो आज तक याद हैं। उनमें से हैं ईदगाह, ये कहानी हम सभी ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ी होगी। दूसरी कहानी जो मुझे याद है, जो मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी, वो बड़े घर की बेटी, उस पर आगे चलकर एक फिल्म भी बनाई गई। इसके साथ ही आपकी बहुत सारी कहानियाँ, जैसे कि सर्वाधिक प्रचलित कहानी मैं कहूँ तो गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, दो बैल, ये आपकी बहुत ही फेमस कहानियाँ और रचनाएं हैं। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय, आपका जो असली नाम था वो धनपत राय था, धनपत राय श्रीवास्तव, आगे चलकर हिंदी उर्दू साहित्य के महान कथाकार आप प्रेमचंद बने। लिखन की शुरुआत आपने नवाब राय नाम से की, बाद में आपको प्रेमचंद नाम अपनाया। वैसे तो ये कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे उपन्यास और कहानियों को हम सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन यदि आप मेरी तरह हैं, जिसको कहानियाँ पढ़ने का शौक नहीं है, या उपन्यास में या यूं कहूँ कि पढ़ा नहीं जाता उपन्यास या कहानी, तो आप अपने YouTube पर जाकर तहरीर मुंशी प्रेमचंद की ये सर्च कर सकते हैं और प्रसार भारती आर्काइव में तहरीर नाम से इनकी सभी उपन्यासों के ऊपर नाटक चित्रण किया गया है, उसको देख सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने भी सारे ये जो अभी आपके सामने नाम लिए, गोदान, कफन, पूस की रात, उर्मिला, बूढ़ी काकी, ये सभी मैंने उसी तहरीर में देखे हैं। अब काफ़ी सारे लोग मेरी इस बात से नदारद भी होंगे कि जो आनंद उपन्यास को पढ़ने में आता है वो देखने में कहाँ आता है, क्योंकि डायलॉग्स को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ना पढ़ने से बेहतर है देख लेना, कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि उस उपन्यास के अंदर उपन्यासकार ने लिखने के लिए क्या लिखा है। लेकिन यदि आपके पास समय है और आपका मन लगता है तो बिल्कुल आप उपन्यास और कहानियाँ पढ़िए, उससे आपको ज़्यादा समझ होगी और लेखक की भावनाओं का सम्मान भी तभी होगा जब हम उन उपन्यासों को पढ़ेंगे। आपकी जयंती पर हम आपको शत शत नमन करते हैं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। आपको पता ही है कि 24 जुलाई से 2 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित हो रहे हैं। अंग्रेजी में इसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, बहुप्रचलित नाम भी कॉमनवेल्थ गेम्स ही है। तो आपको कुछ बेसिक जानकारी और फिर भारत से रिलेटेड जानकारी हम आपको देते हैं। पहली बार इन खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था। 1930 से 1950 तक इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर

एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, और 1970 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था, और 1974 में नाम बदलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में क्या अंतर है, तो इसमें एक बेसिक अंतर है। ओलंपिक में विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी के एथलीट जो उस खेल के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल वही देश प्रतिभागी करते हैं जिन देशों पर कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया था। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो जिन देशों पर कभी ना कभी अंग्रेज़ों का शासन रहा वही इस खेलों में प्रतिभागिता कर पाते हैं। इन खेलों का जो ध्येय है वो मानवता, समानता और नियति है। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में इसके सचिव माइकल फेनल ओजे हैं। अब ये खेल भावना के साथ ही खेले जाते हैं। भारत 1934 से ही इनमें प्रतिभागिता कर रहा है, और आपको ये जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि 2010 में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे, उसके बाद अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे यानी 2030 के, उसमें भी हम, मतलब भारत, इन खेलों को होस्ट करने वाला है। अब जो होस्ट नेशन रहता है उसको एक बेनिफिट मिलता है कि वो बिना क्वालिफिकेशन के जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उन सभी में प्रतिभागिता कर सकता है। अब क्वालिफिकेशंस कैसे होते हैं, तो जो 4 साल का गैप है दो खेलों के बीच, ओलंपिक्स हों चाहे कॉमनवेल्थ हों, तो उसके बीच में बहुत सारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप या वर्ल्ड कप कहें वो आयोजित किए जाते हैं। उसमें कुछ जो टॉप की टीम्स रहती हैं वो आने वाले गेम्स के लिए क्वालिफाई कर पाती हैं। भारत के प्रदर्शन की कॉमनवेल्थ गेम्स में बात करें तो अभी तक भारत ने, अभी तक मतलब कि 1900 जब से गेम्स में भारत ने सहभागिता की है तब से लेके 2022 तक, 2026 का भी क्योंकि गेम्स जारी हैं इसलिए आंकड़ा नहीं आया है, जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो इसमें जुड़ेगा। 2022 तक भारत ने 203 गोल्ड, 190 सिल्वर, 171 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 564 पदक हासिल किए हैं, और इन पदकों के साथ हम मेडल टैली, ओवरऑल जो मेडल टैली है अभी तक 2022 तक की, उसमें हम चौथे स्थान पर हैं। अब बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, तो कल रात्रि तक, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो स्कॉटलैंड के टाइम से 5.5 घंटे आगे चल रहा है, तो कल रात्रि तक हमने विभिन्न खेलों में जितने खेल अभी संपन्न हुए हैं उनमें 3 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 17 मेडल अपने नाम किए हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को आप जानते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें खेल खेलने से भी बचपन में रोक दिया गया था, लेकिन आज वो भारत की शान बने हुए हैं। हम सभी आपको शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि बचे हुए दिनों में भारत सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज एक और महान व्यक्ति की पुण्यतिथि है, उनका नाम है ऊधम सिंह। आपका पूरा नाम शहीद ऊधम सिंह कंबोज है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी। आपने जलियांवाला कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह हत्याकांड ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था और जिसके कारण पंजाब प्रांत पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की गई और आपने भारत का एक तरीके से बदला ब्रिटेन में जाकर हम सभी के ओर से लिया। जलियांवाला हत्याकांड आपको पता ही है कि जनरल डायर ने चारों ओर से उस पार्क को गेट बंद कराकर सिपाहियों से अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों भारतीय निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। अमृतसर में आज भी ये जलियांवाला बाग और वहाँ जो कुआ था हम सभी के देखने के लिए आज भी वहाँ है। आपकी पुण्यतिथि पर हम आपको शत शत नमन करते हैं और ऐसे महान क्रांतिकारी को जीवन चरित्र का अनुसरण हम सभी को करना चाहिए और जीवन चरित्र को एक बार पढ़ना भी अवश्य ही चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के ये सुंदर सुंदर रंग आते हैं, आते कहाँ से हैं? 13 रंगों से 13 लाख रंग बनाने की यह कला और इस कला को करने वाले लोगों को कहते हैं रंगरेज। और ये रंगरेज जो रंग करते हैं वो कभी फेड नहीं होते, ये सब्र और महारत का खेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से ये बात कैसे याद आ गई। ये बात अचानक से इसलिए याद आई क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, सावन का महीना है, और सावन की शुरुआत में सावन के महीने में विशेष महत्व है लहरिया दुपट्टे का। महिलाएं सावन के महीने में रंगे हुए लहरिया विभिन्न विभिन्न प्रकार के दुपट्टे ओढ़ना पसंद करती हैं। पोशाक आपने चाहे कोई भी पहनी हो, ऐसा कहा जाता है कि पोशाक आपने चाहे कोई भी पहनी हो, लेकिन सावन के महीने में लहरिया पहनना एक कंपल्शन टाइप का रहता है। लहरिया दुपट्टे को रंगने में सबसे पहले एक फलक दिया जाता है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आपको देंगे, चूँकि सावन का महीना भी चल रहा है। कलफ इसमें दिया जाता है और उसके बाद बहुत छोटी छोटी, जैसे कहते हैं अगर एक मीटर तो खैर बहुत छोटा हो गया, मान लीजिए 2.5-3 मीटर का यदि कोई कपड़ा है तो उसमें छोटी छोटी कलफ बनाने के लिए अब

उसको बहुत सेंटीमीटर्स में तोड़ना पड़ेगा। आप इमेजिन करिए कि अपनी एक उंगली के बराबर कपड़ा पहले एक कलर में डिप करेंगे, उसके बाद बहुत थोड़ा सा हिस्सा वाइट कलर का छोड़ देंगे, फिर एक उंगली के बराबर किसी और कलर में डिप करेंगे। ऐसे करते करते एक लहरिया पैटर्न बन जाएगा, उसमें फिर एंड में एक और कलर दिया जाता है, उसको अच्छे से मोड़ा जाता है ताकि जो श्रिंक का पैटर्न है वो उसमें बहुत ही ठीक तरीके से रम जाए, बहुत अच्छे तरीके से उसमें शामिल हो जाए। और ये ऐसा किया भी इसीलिए जाता है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स पहनने में हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता है। यदि हम एक ही कलर के कपड़े लगातार पहनते रहेंगे तो वो कलर का इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर अवश्य होता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। एक छोटी सी सब्जी कह लीजिए या फ्रूट कह लीजिए, आपने उसका नाम सुना होगा करौंदा। यह सब्जी सिर्फ 3 महीने के लिए मार्केट में आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एकदम से इसके बारे में आपको क्यों बताने लगे। इसलिए बताने लगे क्योंकि आजकल हम लोग कुछ सो कॉल्ड डाइटिशियंस को देख कर विदेशी सब्जियों की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। उसमें से एक है मुख्य रूप से ब्लूबेरी। हम भारतीय ब्लूबेरी को तो भूल ही गए, वो है करौंदा। इसमें पोटेंट कॉम्बिनेशन जो है वो फिनोलिक एसिड्स, एंथोसाइनस और फ्लेनॉइड्स का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के ऐसे पाथवे को एक्टिवेट करता है जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है और हमारी की जो बॉडी फैट स्टोरेज मोड है ना, वो उससे चेंज करके बर्निंग मोड में चली जाती है। यानी कि जब हम करौंदे का सेवन लगातार करते रहते हैं, अभी भरपूर मात्रा में बाज़ारों में करौंदा उपलब्ध है, तो जब हम उसका सेवन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो फैट जमा हो जाता है आसपास, वो बर्न होने लगता है केवल वो खाने मात्र से। अब ये खाने में हालांकि बहुत खट्टा होता है, इसको थोड़ा पका कर खाइए। जैसे उसको आप मिर्च के साथ हल्का सा पका सकते हैं, हरी मिर्च के साथ उसको पका सकते हैं या उसकी चटनी बना सकते हैं या और भी अन्यत्र तरीके से जिससे आप खाना पसंद करें खा सकते हैं। रॉ भी कई लोग उसको खाते हैं, तो आप चाहें तो उसको साफ़ पानी से धोकर रॉ भी खा सकते हैं। जब ये बर्निंग मोड पर हमारा फैट शिफ्ट हो जाता है।

है तो इससे हमारे लिवर का जो अच्छे एंजाइम्स हमारे लिवर में होते हैं जिसे हम एलिवेटेड एंजाइम्स कहते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इसके सेवन करने से शुगर स्पाइक जो है वो कम हो जाता है और हमारी बॉडी को फाइबर की जितनी आवश्यकता होती है वो मिलना शुरू हो जाती है जिससे हमारी हार्ट हेल्थ और गट हेल्थ दोनों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद फ्रूट है। तो हम तो आपसे ये कहेंगे कि विदेशी सब्जियों की या फ्रूट्स की तरफ भागने की अपेक्षा है ज़रा आसपास की बाज़ार में एक बार हो आइए, भारत का यदि कुछ फ्रूट उसके मुकाबले कहीं बेहतर है तो अवश्य उसका ही सेवन कीजिए। यदि आपको लगे कि ये नहीं वो ज़्यादा बेहतर है तो उसका सेवन कर लीजिए, लेकिन एक बार ज़रा बाज़ार में नज़र मारिए। लीजिए, आपसे बात करते करते कब समय हो गया पता ही नहीं चला, अब घड़ी हमें इजाज़त नहीं दे रही कि आपके साथ चर्चा को आगे जारी रखा जाए। कार्यक्रम में आपके साथ मैं था आपका दोस्त अनुराग शर्मा, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अली अहमद खान से सारंगी वादन राग गुर्जरी तोड़ी में।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे अली अहमद खान से सारंगी वादन राग गुर्जरी तोड़ी में। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं, प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। रतलाम जिले में गुरु पूर्णिमा के साथ चतुर्मास की शुरुआत हो गई है। जिले में गुरु पूर्णिमा पर कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने गुरुजनों का सम्मान किया। चतुर्मास के दौरान जैन संत और साधवियां विभिन्न स्थानों पर प्रवचन देंगे। वहीं सावन महीने में शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई कांवड़ यात्री पहले सोमवार को महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाएंगे। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के कर्मचारी अमित को सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा के लिए मैन ऑफ द मंथ संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमित ने उज्जैन संत हिरदाराम नगर रेलखंड पर संदिग्ध विस्फोटक सामग्री देखकर तुरंत अधिकारियों को सूचना दी थी। रतलाम जिले के बिरमावल और रावटी में करीब 68 करोड़ रुपए की लागत से बने दो आधुनिक सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह और मंत्री चैतन्य कश्यप मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने विद्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बनाने की भी घोषणा की। सांदीपनी विद्यालयों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण का विशेष अभियान चलाया गया। बिरमावल में सिकल सेल हीमोग्लोबिन सहित कई जांच की गई। वहीं बड़ावधा विद्यालय में 588 विद्यार्थियों की आंखों की जांच हुई, जिनमें 70 बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्या मिली। सभी बच्चों को जरूरी उपचार और सलाह दी गई। जावरा क्षेत्र में दो प्रमुख सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए 56 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। इन सड़कों से ग्रामीण इलाकों की आवाजाही बेहतर होगी। वहीं लेबड़ नयागांव फोरलेन हाईवे पर दुर्घटना कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट सुधारने का काम भी किया जाएगा। जावरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और सुधार कार्यो के अनुपूरक बजट में 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से भीमाखेड़ी फाटक चौराहा और अर्निया फंदे पर सड़क चौड़ीकरण, विद्युत व्यवस्था और दुर्घटना संभावित स्थानों में सुधार का काम किया जाएगा। राज्य सरकार ने जावरा क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए पिछले 5 वर्षों में 80 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। डोडर और सुजापुर में बालिका छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके अलावा नए स्कूल, बालिका शौचालय, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल मैदान भी बनाए जाएंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत नई दिल्ली और उज्जैन की टीम ने रतलाम जिले का दौरा किया। टीम ने जिला और ब्लॉक स्तर पर आयरन दवाओं की उपलब्धता और अभियान की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि BDMS रैंकिंग में मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है और ई औषधि ऐप के माध्यम से आयरन की उपलब्धता को और मजबूत किया जा रहा है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में 1 अगस्त को थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर बच्चों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था भी की जाएगी। शिविर में जेनेटिक काउंसलिंग, दिव्यांग प्रमाण पत्र और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। कलेक्टर मीशा सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत अधिक से अधिक कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गैर संचारी रोगों की जांच अभियान तेज करने को भी कहा। लापरवाही बरतने पर 2 ANM के निलंबन का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत रिंगनोद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 85 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। इस दौरान उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सलाह भी दी गई ताकि गर्भावस्था के दौरान बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके। रतलाम जिले में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत BPL परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु होने पर परिवार को 20,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हितग्राही संबंधित जनपद पंचायत, नगर निकाय, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आयोजित प्रधानमंत्री आवास समाधान कैंप के पहले चरण में 525 लंबित आवेदनों का निराकरण किया गया और 5,688 आवासों की जियो टैगिंग पूरी हुई। पहले चरण की सफलता के बाद अब 27 से 31 जुलाई तक सभी जनपद पंचायतों में दूसरे चरण के कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ आवास, किश्त और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रतलाम में खेल और युवा कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश के पर्यटन विभाग की ओर से 7 अगस्त को रतलाम में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को प्रदेश की पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। रतलाम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। हम
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन

स्टेशन न्यूज़ ऑन EIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05:25 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। पुनः सुनिए, 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर से डॉक्टर AK शुक्ला, डॉक्टर नीलिमा शुक्ला, डॉक्टर अशोक चौहान, डॉक्टर जितेंद्र अंबानी, डॉक्टर S. मालती, डॉक्टर अनीश पांडे, डॉक्टर सोनल अग्निहोत्री, डॉक्टर श्रद्धा शर्मा, डॉक्टर नीतू गोस्वामी, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, डॉक्टर चंदना जैन, डॉक्टर राजेश छात्रा, डॉक्टर राकेश टैगर, डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर गणपत अर्गल और डॉक्टर राजनारायण शर्मा की। आप सभी डॉक्टर प्रभा चौहान को उनके जन्मदिन पर डेडिकेट करना चाहते हैं फिल्म फर्ज का ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। फिर से सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है गोविंदपुरी सिटी सेंटर ग्वालियर से डॉक्टर प्रभा चौहान, उषा चौहान, सीमा चौहान, निशि चौहान और मधु चौहान, साथ ही भोपाल से दुष्यंत चौहान की। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में मदन मोहन का संगीत, कैफी आज़मी का लिखा फिल्म हकीकत का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपकी भेजी हुई फरमाइशों पर गीत सुनवाते हैं। यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने शामिल की है आप सभी की। आप हैं बिरला नगर हजीरा ग्वालियर से, आलोक सिसोदिया, रुद्रांश सिसोदिया, डॉली सिसोदिया, विवेक सिसोदिया, विनी सिसोदिया, विनी सिसोदिया, नीली सिसोदिया और संपूर्ण सिसोदिया परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को, जयदेव का संगीत, साहिर का लिखा, फिल्म हम दोनों में।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। पुनः सुनिए 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइशें आप सभी की। आप हैं ग्राम संदलपुर आतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी, दीपक और चांदनी यादव। सौदागर संतर मुरार से गिरीश मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, निशा मिश्रा, सलामता खान और सोनाबाई।

छोटी बलिया कर्जत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ जूही इकबाल, आसमा आमना इमरान और इकबाल, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से फारूक शेख, शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और मुस्कान, नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मुनीरुनिसा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, नई बस्ती गंज ढुंडवारा से यासीन हाशमी, नाजमा हाशमी, तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म सूरज का ये गीत। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, गायक है मोहम्मद रफ़ी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
3: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
2: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
3: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
2: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
3: और उसको पिएं छान कर उबाल कर।
2: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
3: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
4: पानी रे पानी,
5: पानी पानी रे पानी,
2: आओ मिलकर करें प्रयास,
3: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं। रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
4: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की, आप हैं बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय बमारकंडे, ममता और किट्टू, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, बुलठाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेत कुमार, बुलढाणा वडशिंगी।

अल्ताफ, कल्लू मल्लू और कलिया बिलदार, गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशबद, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर फिल्म चिराग का ये गीत। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत है मदन मोहन का, गायक हैं लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म यादों की बारात में। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था आर डी वर्मन का। फरमाइश करता थे आप सभी आप हैं, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोदपुरी, असम से हितेंद्र दास, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, सिया जाधव, नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता, अडार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा, शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म ब्रह्मचारी से। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, गायक है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर। फरमाइश करता है आप सभी आप हैं, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेतान नेताम, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जानवी यादव, इंदिरा बिहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बीबी अंसारी, यामिनी राज, जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज, उमा राज, पुराना तालाब डुमराव से बलीहुल्ला अंसारी, शबनम नाज, अस्मा नाज अंसारी और प्रमीला जाटव। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म ब्रह्मचारी से ये गीत।

0: श्रोताओं, फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करें।
1: क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म
2: है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 के संसद से पारित होने का स्वागत किया। ये विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक पोस्ट में संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन प्रत्येक पीढ़ी को देश के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2026 जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कानून है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग समन्वय से काम करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले में आयोजित प्रदेश स्तरीय ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रूपए के ऋण का वितरण करेंगे। साथ ही करीब 284 करोड़ रूपए से अधिक लागत के विकास कार्यो की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से गांव, किसान, श्रमिक और वंचित वर्ग के जीवन संघर्ष को सजीव अभिव्यक्ति दी। और प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी नीरजा। हमारे श्रोताओं के फोन और उनकी पसंद के गीतों से सजा ये कार्यक्रम हर बार की तरह एक बार फिर आपके साथ है।

0: तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर और बिना देर किए जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हेलो,
1: आवाज आ रही है, आप अपना नाम बताइए पहले तब।
0: जी, मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं विजय पांडे बोल रहा हूँ। पहले दो लाइन में सुनाऊँ?
0: जी जी।
1: दोस्ती
0: जी,
1: ये दोस्ती है ये चिराग जिसे जलाए रखना,
0: बिल्कुल
1: दोस्ती गुल है इसे खिलाए रखना, हम रहे या ना रहे इस जहां में, बस हमारी याद दिल में बसाए रखना। आदरणीय मोहतरमा साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
0: आपको भी हम नमस्कार कहते हैं और स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। कार्यक्रम यहाँ पर है फोन करिए गीत सुने, आपकी पसंद के गीत आज हम आपको सुनवाएंगे।
1: पर कुछ कहना चाहूँगा।
0: बिल्कुल।
1: कहा गया है कि दोस्त वो नहीं जो एक तालाब खुश्क हो जाने पर मुर्गाबी की तरह उड़कर किसी दूसरे तालाब का रुख कर ले, बल्कि दोस्त तो वो है जो तालाब खुश्क हो जाने पर कमल के फूल की तरह सर झुकाकर वहीं पर खत्म हो जाए। यही सच्चे दोस्त की दोस्ती के पहचान का आला दर्जा है।
0: बिल्कुल, दोस्ती तो कुछ ऐसी ही होती है जो हर बुरे वक्त में, चाहे खुशी के पल हों चाहे दुख के पल हों, हमेशा दूसरे का, एक दूसरे का साथ निभाते हैं हम।
1: जी जी जी जी।
0: तो बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज दोस्ताना फिल्म का है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, हम सभी दोस्तों के लिए ये गीत समर्पित करना चाहूँगा।
0: कौन सी फिल्म का गीत है ये?
1: दोस्ताना फिल्म का।
0: चलिए ठीक है, तो आपका पसंदीदा गीत आप तक पहुंच रहा है।
1: जी, धन्यवाद आपको।
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार,
1: नमस्ते,
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: कैसे हैं, क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है मैडम, रिम झिम बारिश हो रही है यहाँ तो अभी फिलहाल।
0: तो बारिश का मौसम तो यहाँ पर भी है और बहुत अच्छा लग रहा है
1: हाँ सभी दूर अच्छा है, मौसम सुहावना है मैडम।
0: जी। और हैदर जी, बताइए घर में क्या चल रहा है, आज की दिन की शुरुआत कैसी हुई?
1: हाँ तो बस मैडम अभी फिलहाल तो अभी घर पे बैठे हैं, अभी थोड़े देर से खेत पेड़ पे जाएंगे, बस ये शुरुआत है फिलहाल तो। अभी तो आज रफी साहब की पुण्यतिथि है, मतलब कल 46वीं, तो
0: जी
1: रफी साहब की आवाज में गीत है फिल्म पगला कहीं का। ये फिल्म का नाम है पगला कहीं का, वो उसका गीत है हाँ मुझे तुम यूं बुला ना पाओगे, रफी साहब की आवाज में गीत है।
0: फिल्म का नाम है पगला कहीं का।
1: और गीत के बोल हैं तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे। तो
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम आपको
1: हाँ वो
0: सुनवाएंगे
1: हाँ मैडम, ये मेरे परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, शकीला
0: जी।
1: बानो है, समीम बानो है, रुखसार बानो है, शन्नो भी है और असीना भी है।
0: जी, आपकी फैमिली के सारे जो भी मेंबर्स हैं उनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप सॉन्ग, है ना?
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो चलिए, बिल्कुल आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाया जाएगा।

0: हेलो, नमस्ते
1: हेलो।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप ठीक हो?
0: जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाम जानना चाहेंगे आपका?
1: पंडित शिव नारायण तिवारी सागर।
0: जी, सागर से बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सागर से बात कर रहे हैं।
0: बताइए, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है, अच्छा मौसम है, अच्छी बारिश हो रही है।
0: यहाँ भी काफी अच्छी बारिश हो रही है और सुहावना मौसम हो रखा है, बिल्कुल खूबसूरत मौसम है।
1: जी मैम, आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ। और बताइए, कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनवा दें?
1: आई मिलन की रात का,
0: आई मिलन की रात का कौन सा गीत?
1: सावन का महीना आया है।
0: सावन का महीना आया है। जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम में जब आप जुड़ते हैं तो जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं उस गीत से कोई याद आपकी जुड़ी होती है?
1: याद क्या, अब सावन का महीना है तो खुशी में उसके उपलक्ष्य में ही तो सुनना चाहती। जी
0: यानी सावन का महीना है तो चलो सावन का ही गीत सुन लिया जाए, है ना? चलिए, बिल्कुल आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे। धन्यवाद
1: जी ओके,
0: कार्यक्रम से आप जुड़े।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्ते।
1: हाँ नमस्कार, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश सर राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ दीदी।
0: देवास से बात कर रहे हैं, राजेश अग्रवाल।
1: हाँ, राजाराम नगर देवास से बोल रहा हूँ।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत दीदी, जैसे कल मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि है
0: जी
1: तो उनका ही गीत ले लीजिए, ये अमर अकबर एंथोनी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, या फिर कोई सा भी रफी साहब का गीत सुनवा दीजिए जी,
0: अमर अकबर एंथोनी से रफ़ी साहब का गीत सुनना चाहेंगे।
1: उनकी पुण्यतिथि है ना
0: जी
1: मोहम्मद
0: जी
1: रफी की,
0: जी
1: तो करोड़ों श्रोता उनकी ओर
0: जी
1: से
0: बिल्कुल
1: श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको 46वीं पुण्यतिथि पर।
0: जी जी
1: और लोकेंद्र वर्मा है हमारे साथ में, राम बाबू मालवी है हमारे
0: हाँ।
1: दोस्त, इन सबके साथ में ये गीत सुनवा दीजिए आप
0: यानी आप
1: रफी
0: अपने
1: साहब।
0: जो भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ ये गीत सुनना चाहते हैं, डेडिकेट करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को।
1: जी जी हाँ,
0: बिल्कुल। और बताइए क्या हाल चाल है
1: बस ये प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है देवास में मेरा,
0: जी? और बताइए दिन
1: और
0: कैसा
1: हाँ
0: शुरू हुआ आज?
1: बढ़िया है दिन, तो अभी कार्यक्रम ही सुन रहा है, रेडियो चल रहा है
0: अच्छा
1: मतलब
0: अच्छा
1: लगातार।
0: बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश सुबह हुई थी और अब रुकी भी है, जैसे हो गई थी सुबह, आज थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है और फिर बंद हो जाता है वापस,
0: अच्छा
1: हो रहा है पानी तो आ रही है, कल आया था
0: जी।
1: वहाँ, बाकी ऐसा वो नहीं आ रहा है, जैसे लगातार नहीं आ रहा, थोड़ी
0: अच्छा
1: थोड़ी देर में सावन सेरे के आ रहा।
0: सावन का महीना
1: हाँ, शुरू हो चुका है,
0: है। चलिए, कार्यक्रम से आप जुड़े, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते
1: नमस्कार। मध्य
0: नमस्ते
1: प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश प्रसारण ना।
0: जी,
1: हाँ मैं श्रीपाद जाखरे बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से। हाँ
0: महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं आप? कौन?
1: श्रीपाद जाखरे। हाँ
0: जी
1: जी
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी
0: महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, पुणे से।
1: हाँ पुणे पुणे से बात कर, हाँ पुणे महाराष्ट्र से। जी
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद। हाँ
0: बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके?
1: बस अच्छे हैं मैडम। यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे
0: लगातार बारिश हो
1: देहरादून से।
0: रही
1: हाँ
0: है, बहुत ज्यादा।
1: जी
0: यहाँ
1: बहुत
0: भी
1: ज्यादा
0: बारिश
1: हो
0: हो रही है और मौसम तो मतलब बहुत ही प्यारा सा है।
1: हाँ
0: आपके
1: अभी
0: यहाँ ज्यादा
1: मतलब
0: बारिश
1: बारिश।
0: हो रही है ना?
1: हाँ जी यहाँ
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: लगातार बारिश हो रही है, अभी बंद भी हो रही है, कम ज्यादा ऐसा चल
0: अच्छा
1: रहा है
0: अच्छा
1: मतलब।
0: बताइए
1: जी
0: कौन सा गीत सुनवा दें आपको, कौन सी फिल्म का?
1: हाँ जी, हम मोहम्मद रफी की आवाज में वो गाना सुनना है।
0: जी कौन सा गीत?
1: ये पुराना गाना है, चंगेज खां का गाना है। चंगेज खां पिक्चर, पुरानी पिक्चर, बहुत पुराना।
0: जी
1: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मरनी है सत्य, ये गाना है।
0: जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी पसंद का गीत सुनाने के लिए, और अगर नहीं भी मिल पाया तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गीत आपको जरूर सुनवाएंगे।
1: जी आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा,
0: जी
1: हाँ जी तो हमको कल सुनने को मिलेगा ना
0: बिल्कुल, कल
1: कल?
0: 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है फोन इन का,
1: हाँ
0: उसमें आप ये सुन पाएंगे।
1: तो 11 से 12 के बीच रहता है। हाँ
0: हाँ 11 से 12 के
1: जी
0: बीच में ही रहता है, 58 मिनट्स का
1: अच्छा,
0: प्रोग्राम रहता है, 58 मिनट
1: हाँ
0: का।
1: जी हाँ,
0: ठीक है
1: अच्छा
0: जी,
1: जी
0: कार्यक्रम से आप जुड़े,
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम, मैं जीनत अंसारी बोल रही हूँ, महेश्वर से। जी
0: जीनत अंसारी जी बात कर रहे हैं। बताइए, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है?
1: मैम, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: मैम, मुझे ये दिल आशिकाना मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना है।
0: और बताइए, बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: बहुत कम हो रही है मैम बारिश, रुक रुक के हो रही है बारिश।
0: अच्छा, रुक रुक के हो रही है बारिश।
1: जी
0: आपको अच्छा लगता है बारिश में जाना बाहर?
1: जी मैम, बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम।
0: बिल्कुल, बाहर जाइए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना है, भीगना नहीं है
1: जी
0: ज्यादा,
1: मैम,
0: है ना?
1: जी मैम, सभी को अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए।
0: और ये जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है ना, इसमें अच्छी अच्छी चीजें खाने का बड़ा दिल करता है, भुट्टे हुए या फिर पकौड़े, चाय, है ना?
1: जी थैंक
0: तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे
1: यू मैम,
0: कार्यक्रम से आप जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: अशोक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मैडम,
0: अशोक
1: राजस्थान जयपुर
0: श्रीवास्तव।
1: से। जी मैडम, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ मैडम, बस फोन ट्राई कर रहा था तो लग गया।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है, लग गया।
1: मैडम, एक गाना सुनना है। फिल्म
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: का नाम है सावन को आने दो, इसी में एक गाना है तो मैं गीतों में ढा दूंगा।
0: सावन को आने दो, फिल्म का नाम है
1: जी मैडम, तो
0: और गीत का नाम क्या है?
1: मैं गीतों में ढा लूंगा, सावन को आने दो मैडम। और ये डेडिकेट आपको रहेगा। और आपके यहाँ दो कॉलर कॉल करती हैं, रोनू नंदिनी, उनका
0: जी,
1: कॉल हमें बहुत पसंद है, तो
0: अच्छा,
1: उनको भी डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल। और बताइए क्या चल रहा है, कार्यक्रम सुन रहे हैं अभी इस वक्त आकाशवाणी पर आप?
1: कभी कभी सुनते हैं मैडम। जी
0: कभी कभी सुनते हैं।
1: जी
0: और बताइए, घर में और लोग सुनते हैं कार्यक्रम?
1: मेरे बच्चे वगैरह हैं वो सुनते हैं कभी
0: अच्छा
1: कभी।
0: अच्छा
1: हाँ, दो बहुएं भी हैं, नाती पोते भी हैं। हाँ,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: कभी कभी लगा देता हूँ, संडे को ज्यादा सुनते हैं पूरी फैमिली।
0: अच्छा अच्छा मौसम के क्या हाल है वैसे आपके यहाँ? सभी लोगों से मौसम की बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पर?
1: मैडम, मौसम का तो ऐसा है कि इस बार बारिश बहुत ही कम है हर जगह,
0: हाँ ये तो है, कोई बात नहीं,
1: तो ईश्वर से कामना करते हैं कि बारिश बहुत जल्दी आए
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: सभी किसान भाई लोग खुश हो जाएं।
0: हाँ, बारिश होनी चाहिए।
1: जी मैडम, जी
0: चलिए, पूरी कोशिश करेंगे हम आपका गीत सुनवाने के लिए, है ना?
1: ओके, धन्यवाद मैडम।
0: कार्यक्रम से आप जुड़ी, धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। मैं आपका शुभ नाम जानना चाह रहा हूँ।
0: मैं आपकी रेडियो साथी नीरजा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा नीरजा दीदी, नीरजा दीदी। अब तो और क्या हाल चाल है भोपाल का?
0: बहुत अच्छे हाल चाल हैं, आप बताइए, आपके क्या हाल चाल हैं?
1: हमारे भी बहुत अच्छे हाल चाल है। बीच बीच मानसून लापता हो जाती है तो वही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। गर्मी उमस बहुत हो जाती है।
0: अचानक से बारिश आ जाती है, कभी बंद हो जाती है ना?
1: जी।
0: तो भाई, आपका नाम जानना चाहेंगे हम।
1: जी, नाम तो हम जरूर बताएंगे। हालांकि हमारे पूरे इंडिया के हमारे नाम और हमारे आवाज से परिचित हैं दीदी, पर हमको थोड़ा अफसोस हो रहा है कि आप हमारी आवाज से नहीं पहचान पा रही हैं।
0: कोई बात नहीं, जान जाएंगे अब, बता दीजिए नाम।
1: तो मैं आपका प्यारा सा भाई खैर मझियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से पंडित राम जी गर्ग बोल रहा हूँ।
0: राम जी गर्ग, ठीक
1: जी
0: है,
1: जी
0: रीवा से बात कर रहे हैं आप।
1: जी जी जी
0: बताइए, कौन सी फिल्म
1: जी
0: का कौन सा गीत सुने?
1: ये बेखुदी फिल्म का गाना मैं सुनना चाह रहा हूँ दीदी।
0: बेखुदी,
1: जी।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बेखुदी से?
1: जब ना माने दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, आले ये दिल तमाम लिखा।

दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी पसंद के गीतों ने आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने में आज बस इतना ही। अब मुझे यानी अपनी रेडियो साथी नीरजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति नीरजा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 के संसद से पारित होने का स्वागत किया। ये विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले में आयोजित प्रदेश स्तरीय ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रूपये के ऋण का वितरण करेंगे। साथ ही करीब 284 करोड़ रूपये से अधिक लागत के विकास कार्यो की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से गांव, किसान, श्रमिक और वंचित वर्ग के जीवन संघर्ष को सजीव अभिव्यक्ति दी। ग्वालियर में देश का पहला ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्योगपतियों से हुई चर्चा में यहां करीब 3,500 करोड़ रूपये के निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। प्रदेश में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बालाघाट पुलिस की पहल को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बालाघाट पुलिस को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। और प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई अन्य जिलों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। समय है आपकी पसंद के गीतों से सजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में जिन्होंने हमें गीत सुनने की फरमाइश भेजी है वो हैं बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बड़ई, शेख मुनीर मंसूरी और ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव, संजयपुरी। साथ ही नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आप तो ऐसे ना थे का गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत निदा फाजली का है और इसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने। लीजिए सुनिए।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए अब सुनिए साजन दहलवी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है श्याम जी घनश्याम जी ने। फिल्म का नाम है ठोकर। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, सरिता सिद्धांत प्रिंस और एकांश। आकाश हाइट बहादुरपुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि और परी। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है प्रियंका, रवि और विजय ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म ठोकर का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बंडा जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी, अनरथ हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कश्मीर की कली का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत SH बिहारी का है और इसे संगीत से सजाया है OP नैयर ने। लीजिए सुनिए।

आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन। गीत सुनना चाहा है सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। साथ ही राजपुर से घिसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता, अस्मिता सौरभ और कुणाल दिलवारे ने।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। ग्राम बड़बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म तीसरी मंजिल का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल मजरूह के हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। ये एक महत्वपूर्ण जनहित सूचना है। भोपाल पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार भोपाल शहर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आपने अपने मकान, फ्लैट या अन्य परिसर को किराए पर दिया है या किसी किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, ड्राइवर, कर्मचारी या अन्य सहायक को रखा है तो उनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने या मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी प्रकार होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, छात्रावास, निर्माण स्थलों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर तथा घर घर जाकर वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से संबंधित निर्धारित जानकारी भी संबंधित संस्थानों द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है। भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शहर की सुरक्षा में अपना सहयोग दें तथा निर्धारित प्रावधानों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामनी काय कांतारे की 16वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 16वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि चारुमित्रा से मिलने चंद्रपुर जा रहे हैं। मार्ग में देवी मणिभद्रा का तांत्रिक क्षेत्र पड़ता है। देवी मणिभद्रा उन्हें चंद्रपुर पहुंचाने में सहायक बनती हैं। अब आगे।

0: राजा भर्तृहरि चारु मित्रा के चंद्रपुर की ओर चल पड़ते हैं। उनके साथ मणिभद्रा भी हैं। मार्ग में एक भयानक नदी आती है। मणिभद्रा भर्तृहरि से कहती हैं,
1: राजा भर्तृहरि, हमें इसी जल मार्ग से होकर चंद्रपुर की राह पकड़नी होगी। इस नदी को पार करके।
2: किंतु मगरमच्छों से भरी इस नदी में पार उतरने का तो कोई साधन ही उपलब्ध नहीं है और तैरना संभव नहीं लगता।
1: देखते हैं, कहीं कोई काष्ठ स्कंद मिलेगा, बांस का डांड भी मिल सकता है। भैरव भैरवी यहाँ जल साधना करते हैं, कुछ तो मिलेगा ही। आओ मेरा अनुसरण करो नरेश, मार्ग सकरा है, सरक कर ही इनसे निकला जा सकता है। यहाँ असावधानी, प्रमाद या स्खलन किसी को भी इन जीवों का आहार बना सकता है। तनिक ठहरो। मकर यमन।
0: एक विशाल काय मगर पानी में तैरता हुआ आता है। मुंह से पानी उछालता हुआ अपने विशाल जबड़ों को कटकटाता हुआ बढ़ता है। उसकी सांसों से निकलती फुत्कार डरावनी है।
1: बोलो भर्तृहरि, इसकी पीठ पर बैठना चाहोगे या अभी भी काष्ठ स्कंद की खोज करूं? ये हमें लेकर स्वतः चलेगा। काष्ठ स्कंद को तो डांडों से खेना पड़ेगा।
2: क्या सचमुच हमें ले जाएगा?
1: ये हमारा मकरयान है राजा भर्तृहरि।
2: फिर जैसा माते का आदेश।
1: आरूढ़ हो जाओ महामकर पर भर्तृहरि, निर्भीक निसंकोच किंतु सावधानी से। मुझे दोनों हाथों से पकड़े रहना। फिसले तो धारा के जल जंतु तुम्हारे स्मृति तक शेष नहीं छोड़ेंगे। यही संसार का क्रम है। ये जीव प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य इन्हें अपनी साधना से साध तो सकता है, किंतु इनका स्वभाव सदा स्वायत्त रहता है। उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। असावधान साधक अपने ही साधन का आखेट बन जाता है। चलो चलो महामकर, चलो।

0: महती, क्या इस मकर को मंत्रों से वशीभूत किया है आपने?
1: मंत्र भी इस विशेष साधना का एक अंग है। मंत्र का प्रमुख तत्व है शब्द और ध्वनि। भिन्न भिन्न शक्तियों के साधना के लिए भिन्न भिन्न मंत्र होते हैं। मंत्र की साधना व्यक्तिक होती है, सार्वजनिकता में मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाती है।
0: क्या मैं भी मकर साधना सीख सकता हूँ माते? माते, आप मेरी गुरु बनेंगी?
1: सब कुछ परम भैरव की इच्छा पर निर्भर है राजन। साधना का ज्ञान कठिन है, समझना और भी कठिन। यदि तीनों संयोग मिल भी जाएं, तो अन्य अनेक बाधाएं आती हैं। पहले तो अपनी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। फिर भी भर्तरी, मेरे यहाँ तुम्हारा सदैव स्वागत है। वो लो, किनारा आ गया है, वो सामने का मार्ग तुम्हें चंद्रपुर ले जाएगा।
0: माते, आपसे मिलकर कृतकृत्य हुआ, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ।
1: महाभैरव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। विदा राजा भर्तरी, विदा विदा।

0: आगे के दुर्गम वन प्रांतर को पार करने का भर्तहरि को लेश मात्र भी भय नहीं था। वो जानते हैं कि किसी भी क्षण कोई भी संकट सामने आ सकता है, लेकिन अब उनके मन में ये विश्वास भी बन चुका था कि संकट से पार पाने की कोई ना कोई युक्ति भी वहीं से निकल आएगी। पहर भर में वो इस भयावह वन से सकुशल निकलकर मुख्य मार्ग तक जा पहुंचे। वहां उन्हें एक सार्थवाह मिल गया और अब वो चंद्रपुर के निकट थे। वो शीघ्र ही चारों मित्रा तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे।
1: अरे ये देवी का, हाँ ये अरे अभी आने वाले देवी दर्शन देवी आएंगे। देवी भद्र भद्र
2: क्या हम,
1: हाँ देवी चारुमित्रा के भवन तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे।
2: अरे ये छोटा सा नगर है जिसके सभी मार्ग चारुमित्रा के भवन पर समाप्त होते हैं और सभी वहीं से प्रारंभ होते हैं। जिधर भी चल पड़ेंगे पहुंचेंगे आप चारुमित्रा के द्वार पर ही। उज्जैनी प्रवास जिस तरह महाकाल के दर्शनों के बिना अधूरा है, उसी भांति चंद्रपुर में चारुमित्रा का दर्शन भी है।
1: कुछ रुष्ट लगते हो मित्र चारुमित्रा से।
2: रुष्ट मैं और चारुमित्रा से क्यों? अच्छा बताइए, कोई किसी से रुष्ट या तुष्ट क्यों होता है, है? अरे कोई अपेक्षा हो, कोई व्यवहार हो। अपेक्षा और व्यवहार तो समानों के बीच होती है मित्र। अरे कहां चारु मित्रा और कहां मैं, उससे अपेक्षा तो सृष्टि सामंत और मूर्ख रखते हैं, मैं इनमें से कोई नहीं है। अच्छा आपकी कोई अपेक्षा हो सकती है, वैसे आप आए कहां से हैं?
1: अवंती से आया हूं और भेंट भी चारुमित्रा से ही करना है, तो फिर मुझे चारुमित्रा के भवन का सीधा मार्ग बताने की कृपा करें।
2: हाँ चलिए मैं ही चलता हूँ आपके साथ है? बहुत दिनों से मैंने भी चारुमित्रा को देखा नहीं है, गवाक्ष दर्शन का समय भी हो रहा है।
1: मित्र चंद्रपुर तो सारंगढ़ राज्य के अंतर्गत है ना?
2: हाँ कहने को तो है, किंतु वास्तव में यहां की अधीश्वरी चारुमित्रा है। सुना है उसने नरेश का आमंत्रण भी ठुकरा दिया है।
1: अर्थात विजय सेन का?
2: तुम तो नरेश का नाम इस तरह से ले रहे हो जैसे वो तुम्हारे अधीन कोई अनुचर हो।
1: मित्र हमें नरेशों अधिपतियों से क्या लेना देना, वो जो हैं सो बने रहें। आपने बताया कि चारुमित्रा ने उनका आमंत्रण ठुकरा दिया, तो वो भी तो हमारी तुम्हारी तरह मनुष्य हुए ना।
2: सुनो अजनबी, अन्यथा मत लेना, आप अपरिचित हैं, अपरीक्षित भी और कूट पुरुष भी हो सकते हैं। अरे ये लो, चारुमित्रा के भवन की हम समीप पहुंच चुके हैं।
3: उसके दर्शनार्थियों का शोर सुन रहे हो ना,
2: आगे बढ़ जाइए। वो रहा चारुमित्रा का सम्मोहन द्वार।
4: लो देवी चारुमित्रा गवाक्ष में दर्शन देने के लिए पधार रही है। मित्र सावधान हो जाओ।
5: देवी चारुमित्रा की
6: जय।
5: देवी चारुमित्रा की
6: जय।
5: देवी चारुमित्रा की
6: जय।
0: अपने रूप गुण से भली भांति अभिज्ञ चारुमित्रा गवाक्ष पर प्रकट हुई तो जय घोष हुआ।

0: धन्य होने, कृतार्थ करने के सैकड़ों स्वर आकाश में गूंजने लगे। चारों मित्राने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर अपने रसिकों अभिलाषियों का अभिवादन किया तथा पार्श्व में खड़ी परिचारिका के हाथों में थामी हुई कनक परात से सुगंधित पुष्पों की अंजलि भरकर नीचे खड़े अपने प्रशंसकों पर उछाल दी।
1: देवी चारुमित्रों की जय, देवी चारुमित्रों की जय, देवी चारुमित्रों की जय।

स्मित के साथ दंत मुक्ताओं की द्युति बिखेरती चारु मित्रा आधी घड़ी तक गवाक्ष में ठहरी रहीं, तदनंतर गवाक्ष से भीतर चली गईं।

0: उस ओर आ रहा है।
1: अरे हाँ, अरे ये कोई अन्य नहीं, ये तो चारु मित्रा के अनुरागी सृष्टि स्वर्णपाद का शाकट है। सठिया चुके सृष्टि को चारु मित्रा यदा कदा विरोध के लिए आमंत्रित कर लेती है। इस अनुकंपा से गदगद सृष्टि ने ये व्यवस्था की है कि प्रिया के दर्शनार्थ जुटने वाले प्रेमियों के मध्यान्ह और रात्रि भोज की व्यवस्था 2 वर्षों से वो करता आ रहा है। अपना अपना समर्पण है भाई।
0: भोजन का भी प्रबंध हो गया, आप यदि अनुमति दें तो रात भी मैं यहीं व्यतीत कर लूं।
1: अरे भाई, हम अनुमति देने वाले कौन है? ये तो चारु मित्र का प्रांगण है और तुम हम सभी से ज्येष्ठ प्रतीत होते हो। लकुटी हाथ में लेकर भिक्षुक का वेश भी बना रखा है तुमने।
0: प्रेमी और भिक्षुक में अधिक अंतर नहीं होता मित्र।
2: रुक्ष बदन, अस्त व्यस्त केश, शमशु मलिन वेश और अधेड़ वय, फिर भी चारु मित्रा की चाह में घनघोर आश्चर्य।
0: देवी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
2: अपरिचित बंधु, मैं न तो देवी चारु मित्रा की परिचरी हूं और न ही कर्म कर सेविका, अभिवादन की अधिकारी भी नहीं, तो फिर क्यों ना तुम्हारे अभिवादन को उपहास समझूं?
0: तुम्हारे प्रति उपहास का मैं सोच भी नहीं सकता। भद्रिनी चारु मित्रा से भेंट करने अवश्य आया हूं, मेरे लिए उनसे मिलना कठिन भी नहीं है, किंतु किसी कारणवश मैं स्वयं को सबके सामने प्रकट नहीं कर सकता।
2: देवी चारु मित्रा तुमसे भेंट करेंगी? सपना तो नहीं देख रहे हो बंधु?
0: यदि चारु मित्रा मेरा संदेश पाने के बाद मुझसे भेंट नहीं करती तो मैं तत्काल यहां से चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम उनके निकट वास करती हो, तो उनसे कोई ना कोई संबंध या परिचय अवश्य होना चाहिए, इसीलिए मैंने अपना संदेश भेजने के लिए तुमसे निवेदन किया है बहन।
2: चतुर हो तुम, तुमने मुझे बहन कहा है तो मैं तुम्हारा संदेश भी पहुंचा दूंगी, यद्यपि यह अपनी सीमा का अतिक्रमण होगा। देवी तुमसे रुष्ट भी हो सकती हैं, तुम वो तो नहीं हो जिसका वेश तुमने धारण कर रखा है।
0: बहन, मैंने कोई वेश नहीं बनाया, जो बनता गया है उसे ही स्वीकार कर लिया है।
2: तुम्हारा नाम?
0: वही मेरा बंधन है, इसीलिए तो उसे प्रकट नहीं करना चाहता। देखना यह है कि चारु मित्रा मनुष्य को नाम से पहचानती है या उसके गुण से।
3: नूनम हिते कविवरा विपरीत बोधा, ये नित्यमाहुः अबला इति कामनीनाम, याभिर विलोल तर तारक दृष्टिपाते, शक्रदयोपि विजितास्त अवला कथमता। ये पत्र आपने भेजा है?
0: हाँ देवी।
3: पद का विन्यास नीति शतक के कवि जैसा है।
0: पद भी नीति शतक के कवि का ही है।
3: तो आप नीति शतक के कवि अर्थात राजा भर्तृहरि हैं?
0: हाँ देवी।
3: चारु मित्रा, अतिथि महाकवि के स्वागत में प्रणति है, आतिथ्य स्वीकार करने का अनुग्रह करें।
0: महिमामयी चारु मित्रा से भेंट करने का मुझे अपार हर्ष है।
3: तो कृपा कर पधारें। सुनंदा, अतिथि सत्कार के लिए मद मंजूषा लेकर आओ। मैंने सुना था कि महाराज इन दिनों अवंती में नहीं है, वहां इन दिनों एक उत्सव भी हो रहा है। महादेवी गर्व से हैं, महाराज पिता बनने वाले हैं। महामात्य पूर्णसेन ने यही संदेश भेजा था, जा ही नहीं पाई। गायक कवि बसंत गया है, उसकी प्रबल इच्छा थी कि वो आपको आपका ही काव्य अपनी जन्मभाषा में सुनाए।

0: मैंने उसे बताया नहीं कि आप वहां नहीं हैं। अगर वो जानता तो उत्सव में नहीं जाता। आपकी अनुपस्थिति से निराश हुआ होगा वो।
1: भद्रे, मैं उससे नीति शतक के पद सुन चुका हूं।
0: सच महाराज?
1: हाँ, और ये भी जाना है कि बसंत ने काव्य का मर्म आपसे ही समझा है।
0: ये बताने की क्या आवश्यकता थी, किंतु उसने मुझे नहीं बताया कि वो आपसे मिल चुका है और अपने पद सुनाकर कृतार्थ हो चुका है।
1: क्योंकि वो नहीं जानता था देवी कि जिस विरागी साधु को वो पद सुना रहा है वही भर्तृहरि है।
0: ये कैसी पहेली है देव?
1: जीवन भी एक पहेली है भद्रे। जहां न जीवन का संभार है और न मृत्यु का भय, सब के सब ऐन्द्रिक काल में संचरण कर रहे हैं, भोग को चरम मुक्ति का सोपान मानते हुए वर्तमान के क्षण की तरलता को मुट्ठी में बांधना चाहते हैं। देवी चारुमित्रा, मैं योगिनी मणिभद्रा के पास ठहरा था, वहां जाना था ये रहस्य।
0: सुना है वहां से कोई जीवित नहीं लौटता, राज्य ने भी उसे वर्जित क्षेत्र घोषित कर रखा है।
1: संसार अनेक भ्रमों का पुंज है देवी। भ्रम कभी सत्य प्रतीत होता है, कभी असत्य प्रतिभासित होता है। जिसे सत्य समझकर भर्तृहरि ने गृह त्यागा था, अब लगता है कि वो भ्रम था। भ्रम
0: देव, कदाचित किसी क्रूर आघात से उत्पीड़ित व्यथित हैं। इसे छोड़े, ये समय विगत को भूल आगत के स्वागत का है। देखें पात्र में भरी सुरा कितनी उत्कंठित चंचल हो रही है।
1: बीते हुए कल भी यही मदिरा मिट्टी के झूठे और खंडित कुल्हड़ में थी।
0: कल का स्वप्न बीत गया देव, आज का सत्य हमारे सामने है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री सृष्टि के रहस्य में प्रवेश नहीं कर पाती है।
1: शची, शची। किंतु चारु मित्रे, स्त्री तो कभी भी मुझे अनुपलब्ध नहीं रही। नैराश्य की अवस्था में भी विधाता ने शची से भेंट करा दी।
0: देव, कहीं यह लकुट शची की भेंट तो नहीं?
1: शची? हाँ भद्रे, ये विदा करते हुए शची ने ही मुझे पकड़ाई थी। किंतु तुमने ये कैसे जाना?
0: इसलिए कि वही एकमात्र स्त्री रही जिससे देव का संयोग बना है।
1: क्या कहती हैं भद्रे? रानी पिंगला, चंपा सदैव उपलब्ध समर्पिता रही। और भी
0: यह देव कि वे सब स्त्री की देह में कोई आपकी पत्नी रही, कोई दासी, कोई क्रीता, तो कोई उत्सुका।
1: तो सुमुखे, एक पहेली सी बार बार मन में उठती है। इससे पूर्व भी ये प्रश्न मेरे समक्ष अनेक बार आ खड़ा हुआ है, किंतु मैंने इसे टाला या प्रमाद में कोई महत्व नहीं दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मिलकर उसका मर्म पकड़ा जा सकता है।
0: प्रश्न क्या बहुत गंभीर है देव?
1: स्यात।
0: प्रश्न क्या है?
1: स्त्री से संबंधित है।
0: वो तो होगा ही, पुरुष से संबंधित प्रश्न में स्त्री कब सम्मिलित हो पाती है?
1: तो देवी, भाव कुछ इस प्रकार है कि स्त्री बातें किसी पुरुष से करती है, देखती किसी और को है और हृदय में किसी और को बसाती है, तो फिर उसे प्रिय कौन होता है?
0: ये तो काव्य प्रसंग है, रच डालिए एक पद इस पर।
1: किंतु जब तक भाव का मर्म चित्त में प्रतिबिंबित ना हो तब तक काव्य कहां संभव होता है देवी?
0: तो फिर मैं प्रयास करूं।

0: तुम यदि कर सको तो मुझे प्रसन्नता होगी देवी। तुम्हारे सहयोग से नीति के साथ एक नया अनुभव जुड़ सकता है। श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, कितना समीचीन होगा ये उपक्रम। प्रयास करो चारु, प्रयास करो, कभी भर्तृहरि का संबल बनकर।
1: भर्तृहरि?
0: हाँ चारु।
1: भर्तृहरि?
0: हाँ चारु।
1: भर्तृहरि?
0: हाँ चारु।
1: कुछ कहने का आवेग सा है।
0: कहो कहो, मैं सुनने को प्रस्तुत हूँ चारु।
1: तुम्हारा भाव अब मेरा भाव बनता लग रहा है।
0: उसे अपने शब्द दो प्रिये, अपने शब्द दो।

0: धन्य धन्य साधु साधु सुभगे, साधु प्रिय साधु, विलक्षण प्रतिभा है तुम्हारे पास
1: देव,
0: विलक्षण प्रतिभा है। भावों की ऐसी सहज अभिव्यक्ति, अद्भुत अद्भुत, साक्षात वीणा वादिनी का विग्रह। समझ में नहीं आ रहा देवी कि तुम्हें क्या कहकर सम्मान दूं। केवल ये कर सकता हूं और यही करना चाहिए कि तुम्हारे चरणों में विनत हो जाऊं।
1: अरे अरे, ये क्या करते हैं देव। मैं एक क्षुद्र जन कल्याणी रूप जीवा, काल का अत्यंत अल्प अंश अपने शरीर की अंजुरी में थामे, इच्छाओं कामनाओं की व्यवसायी। समय आज चारु मित्रा का है तो कल न जाने किसका होगा, और चारु मित्रा काल की जाने किस कंदरा में, जाने कहां, जाने किस हाल में पड़ी होगी।
0: ना प्रिय, ना ना प्रिय, कल की कौन जाने, किंतु आज आज हमारा है। महाकाल ने हमें सौंपे हैं ये क्षण प्रिय।
1: हाँ देव,

भर्तहरि ने चारू मित्रा को अपनी भुजाओं में भर लिया। बड़ी देर तक वो चारू मित्रा को हृदय से लगाए रहे। दोनों की सांसों का संगीत देह में भरने लगा। तप्त अधर मिल गए। सांसों के स्वर, देह की लय ताल, नई बंदिश में कविता की छंद जागने लगी।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 16वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार सुभाष सक्सेना, मणिभद्रा रंजना तिवारी, भर्तृ

हरी, अरविंद बिलगैया, भद्र, भागीरथ साहू, स्त्री कीर्ति कुलश्रेष्ठ और चारुमित्रा दीप्ति अग्निहोत्री।

0: परिकल्पना, पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढोंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 16वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 के संसद से पारित होने का स्वागत किया है। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले में आयोजित प्रदेश स्तरीय ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 284 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समान विधिक संरक्षण प्राप्त होगा। यह विधेयक प्रत्येक राष्ट्रवासी के स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा और राष्ट्रीय मूल्यों के सम्मान का सशक्त प्रतीक है। ग्वालियर में देश का पहला ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगपतियों से हुई चर्चा में यहां करीब 3,500 करोड़ रुपये के निवेश और 14,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। प्रदेश में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बालाघाट पुलिस की पहल को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बालाघाट पुलिस को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। और प्रदेश में सक्रिय 3 मानसूनी सिस्टम के कारण कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन समेत प्रदेश के 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर सहित कई अन्य जिलों में बारिश की जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

महिला सभा कार्यक्रम की सभी श्रोता बहनों को दमयंती वाजपेयी का नमस्कार। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि ऐसा जीना है जिसे दूसरों का भी कल्याण हो। बहनों, ये सुविचार है मुंशी प्रेमचंद जी के, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद कलम का वो दीपक जो आज भी समाज को रोशनी देता है, साहित्य के माध्यम से समाज को दिशा देने वाले युग दृष्टा, जिन्होंने अपनी कलम को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे समाज की पीड़ा, संघर्ष और सच्चाई की आवाज बना दिया। बहनों, आज तकनीक का युग है, हमारे हाथों में मोबाइल तो है लेकिन दिलों में संवेदनाएं कम होती जा रही हैं। ऐसे समय में भी प्रेमचंद जी का साहित्य यही याद दिलाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं बल्कि उसका चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी मानवता है। हम सभी महिलाओं के लिए भी उनका साहित्य प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने नारी को घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं माना, वरन उसके संघर्ष, उसकी पीड़ा, उसके आत्मसम्मान और उनके अधिकारों को अपनी रचनाओं में सम्मान पूर्वक स्थान दिया। इसीलिए आपका साहित्य हमें संदेश देता है कि एक शिक्षित, जागरूक और आत्मविश्वासी महिला ही परिवार और समाज दोनों को नई दिशा दे सकती है। साथ ही बहनों, प्रेमचंद

जी का जीवन भी हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में समाज के प्रति कुछ करने का संकल्प हो तो एक साधारण सा व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। उन्होंने अपने जीवन में हर तरह के संघर्ष झेले, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं थे, बल्कि एक माँ की ममता, एक बेटी के सपने, एक किसान का संघर्ष, गरीब की पीड़ा और सच्चे इंसान की संवेदनाओं की जीवंत तस्वीर है। आपने समाज की सच्चाई बताकर हमें आईना दिखाया। उनकी हर रचना हमें सोचने, बदलने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। आपकी लिखी कहानी ईदगाह का छोटा सा हामिद जब अपने लिए खिलौने न लेकर दादी के लिए चिमटा खरीदता है, तो वो हमें त्याग, प्रेम और संवेदनशीलता का सबसे सुंदर पाठ पढ़ाती है। पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा और गोदान जैसी रचनाएं आज भी समाज की सच्चाइयों को उतनी ही गहराई से उजागर करती हैं जितनी अपने समय में करती थीं। वैसे बहनों, प्रेमचंद जी की लिखी उपन्यास गोदान पर फिल्म भी बनाई गई है, तो आइए हम भी गोदान फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

अभी हमने अनजान के लिखे गीत को पंडित रविशंकर के संगीत निर्देशन में सुना। फिल्म थी गोदान और इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने। मोहम्मद रफी, आज भले ही उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन एक ऐसी आवाज जो आज भी दिलों में जिंदा है। माँ की रसोई में बजता रेडियो हो या बरसात की शाम, कभी किसी त्योहार की चहल पहल तो कभी मन की तन्हाई, हर एहसास में रफी साहब की आवाज ने हमारा साथ निभाया है। उन्होंने प्रेम गाया, भक्ति गाई, देशभक्ति गाई, विरह गाथा गाई, खुशी गाई, साथ ही इंसानियत भी गाई। आपकी आवाज में ऐसी सादगी और सच्चाई थी कि हर गीत श्रोता के अपने जीवन की कहानी बन जाता था। सच, कुछ आवाजें समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन कुछ आवाजें समय की धड़कन बन जाती हैं। मोहम्मद रफी साहब की आवाज ऐसी ही अमर धड़कन है जो हर पीढ़ी के दिल में हमेशा गूंजती रहेगी। रेडियो के माध्यम

0: से तो आप उनके गीत सुनते ही हैं, आपके हाथ में मोबाइल भी है तो उसमें भी जरूर सुनती होंगी, क्योंकि आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है। हमारी सुबह ही मोबाइल की घंटी से होती है और फिर दिन भर हमारा साथ स्मार्ट उपकरण, कंप्यूटर, इंटरनेट और अत्याधुनिक तकनीक निभाते हैं। ऐसे समय में भारत केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि विश्व का एक अग्रणी निर्माता और नवाचार का केंद्र बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इन्हीं संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों को विस्तार से जानने हेतु आइए सुनते हैं वार्ता भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य। वार्ताकार हैं स्वप्ना सिंह।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य बेहद उज्जवल और रोमांचक है, जो तकनीकी नवाचार के नए स्तरों को छू रहा है। भविष्य पूरी तरह से स्मार्ट, छोटे और ऊर्जा कुशल उपकरणों पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और भविष्य में मुख्य रुझान सेमीकंडक्टर। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के मूल में होंगे और जो ऑटोमोटिव से लेकर वायरलेस संचार तक विकास को गति देंगे। अब हम बात करेंगे AI के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे बोला जाता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य आधार बन रहे हैं। स्मार्ट होम और स्मार्ट शहर इसी पर आधारित होंगे। EV और स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन मतलब EV, रोबोटिक्स और नवीनीकरणीय ऊर्जा भंडारण में इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। नई सामग्री गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड जैसी नई सामग्री का उपयोग चिप्स और स्विचेस आदि को शक्तिशाली और कुशल बना देगा। 3D इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप्स के छोटे होने की सीमा को दूर करने के लिए अब 3D पैकेजिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य की तकनीकें वायरलेस चार्जिंग, पहनने योग्य ई स्किन और गंध महसूस करने वाली VR तकनीक, स्मेली VR जैसी चीजें जल्दी ही आम होने वाली हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य। आज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रचार और AI की तकनीकी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब कुछ सीमाओं तक इनका यूज सही है, पर इनको लेकर भविष्य की चिंताएं भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब के क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का एक वैश्विक केंद्र बन रहा है, जैसे मेक इन इंडिया और सरकारी प्रोत्साहनों का बड़ा सहारा मिल रहा है। जॉब्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 2030 तक शानदार अवसर प्रदान करेंगे। सेमीकंडक्टर उद्योग, भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक $103 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और उनके उपयोग से जुड़े उपकरणों का अध्ययन और निर्माण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में एक छोटा सा अंतर है। इलेक्ट्रिकल्स में हम विद्युत के प्रवाह के बारे में जानकारी लेते हैं और उससे जुड़ी कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में निर्वात और गैसों में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रभाव का यूज होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, TV, रेडियो, रोबोट, इलेक्ट्रिक वाहन आदि। इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और ऑटोमेशन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे मशीनें खुद निर्माण करेंगी, स्मार्ट रोबोट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बढ़ाएगा, हर डिवाइस स्मार्ट होता जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाहन EV पेट्रोल डीजल की जगह बैटरी से चलेंगे, बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, भारत में EV सेक्टर में तेजी से नौकरियां बढ़ेंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बारे में आपने सुना होगा, घर के उपकरण इंटरनेट से जुड़ेंगे, जैसे हमारे लाइट स्विचेस वगैरह हम घर से बाहर रहते हुए भी उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी का विकास होगा। 5G और आगे 6G टेक्नोलॉजी का भी विकास संभव है। तेज इंटरनेट, रिमोट सर्जरी, स्मार्ट फैक्ट्री, ड्रोन कंट्रोल आसान होगा। नैनो टेक्नोलॉजी और छोटे चिप्स, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और छोटे तेज और पावरफुल माइक्रोचिप्स का विकास किया जा रहा है। कम बिजली में ज्यादा काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर के अवसर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अच्छा खासा करियर का स्कोप है। एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, IoT डेवलपर, EV टेक्नीशियन, PCB डिजाइनर, इन आदि क्षेत्रों में आप करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी या तकनीकी फील्ड से जुड़े हैं, जैसा हमने पहले कोहा और लाइब्रेरी रजिस्टर के बारे में पढ़ा था या सुना होगा, तो डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम जो कि ऑटोमेशन और AI पर निर्माण किया जाएगा। भारत में भविष्य कैसा रहेगा? भारत में मेक इन

0: इंडिया तकनीकी के अंतर्गत सेमीकंडक्टर मिशन और ईवी नीति के कारण इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले 10 से 20 साल में यह सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में एक होगा। अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दिन प्रतिदिन आपको अवसर बढ़ते ही जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर की तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य अंतर ऊर्जा के प्रवाह का है, ऊर्जा के उपयोग और परिचालन स्तर का है। इलेक्ट्रिकल उपकरण उच्च वोल्टेज पर सीधे विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके उसे अन्य रूपों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित कर कंट्रोल फ्लो करके उन्हें कम वोल्टेज पर काम कराते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य अंतर, अगर हम मूल सिद्धांत की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस उच्च धारा हाई करंट पर काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स लो वोल्टेज लो करंट पर सिग्नल प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं। वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल उच्च वोल्टेज एसी 220 वोल्टेज या 440 वोल्टेज पर काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कम वोल्टेज डीसी डायरेक्ट करंट 5 वोल्ट 12 वोल्ट इन पर काम करते हैं। उपयोग, इलेक्ट्रिकल में तांबा एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाई जाती हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर डायोड आदि का उपयोग किया जाता है। कार्य, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऊर्जा का प्रबंधन ट्रांसमिशन और जनरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेटा और जानकारी को नियंत्रित अर्थात कंट्रोल करते हैं। उदाहरण, इलेक्ट्रिकल मशीनों की बात की जाए तो पंखा मोटर ट्रांसफॉर्मर हीटर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी में कंप्यूटर ट्रांजिस्टर मोबाइल माइक्रो कंट्रोलर आदि सम्मिलित है। अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिजली को सीधे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हीटर में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बिजली को नियंत्रित करते हैं जैसे कि कंप्यूटर में। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तकनीकी रूप से इलेक्ट्रिकल होते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। ये इनके बीच में एक मुख्य अंतर है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास के बारे में बात करें तो वैक्यूम ट्यूब पहले सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक थे जो व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को प्रभावित करके धारा प्रवाह को नियंत्रित करते थे, और इसने ऐसे उपकरणों का निर्माण को संभव बनाया जो धारा प्रवर्धन और सुधार का उपयोग करके हमें रेडियो टेलीविजन रडार लंबी दूरी की टेलीफोनी और बहुत कुछ प्रदान करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रारंभिक विकास तीव्र था और 1920 के दशक तक वाणिज्य रेडियो प्रसार और दूर संचार व्यापक हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायरों का उपयोग लंबी दूरी की टेलीफोनी और संगीत रिकॉर्डिंग उद्योग जैसे विविध अनुप्रयोगों में किया जा रहा था। अगला बड़ा तकनीकी कदम कई दशकों के बाद सामने आया जब 1947 में वेल लैब्स में जॉन वार्डिनर और वाल्टर हाउजर द्वारा पहला कार्यशील पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। हालांकि 1980 के दशक के मध्य तक माइक्रोवेव और उच्च शक्ति संचरण के साथ साथ टेलीविजन रिसीवर के क्षेत्र में वैक्यूम ट्यूबों की अग्रणी भूमिका निभाना जारी रखा, तब से सॉलिड स्टेट उपकरणों ने लगभग पूरी तरह से इसका स्थान ले लिया। वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग अभी भी कुछ विशिष्ट अनुप्रयोगों में किया जाता है जैसे कि उच्च शक्ति आरएफ एम्पलीफायर, कैथोड रे ट्यूब, विशिष्ट ऑडियो उपकरण, गिटार एम्पलीफायर और कुछ माइक्रोवेव उपकरण। अप्रैल 1955 में एमबीएम 608 पहला आईबीएम उत्पाद था जिसने बिना किसी वैक्यूम ट्यूब के ट्रांजिस्टर सर्किट का उपयोग किया, और माना जाता है कि यह व्यावसायिक बाजार के लिए निर्मित पहला पूर्णतः ट्रांजिस्टर युक्त कैलकुलेटर था। 608 में 3000 से अधिक जर्मेनियम ट्रांजिस्टर थे। थॉमस जे वॉटसन जूनियर ने आदेश दिया कि भविष्य के सभी आईबीएम उत्पादों के डिजाइन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाए। उस समय से ट्रांजिस्टर का उपयोग लगभग विशेष रूप से कंप्यूटर लॉजिक सर्किट और परिधीय उपकरणों के लिए किया जाने लगा। हालांकि शुरुआती जंक्शन ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत बड़े उपकरण थे जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना मुश्किल था, जिसने उन्हें कुछ विशिष्ट अनुप्रयोगों तक सीमित रखा। जैक किल्वी और रॉबर्ट नोयस द्वारा एकीकृत परिपथ के आविष्कार ने सभी घटकों और चिप को अर्धचालक पदार्थ के एक ही ब्लॉक से बनाकर इस समस्या का समाधान किया। परिपथों को छोटा बनाया जा सकता है तथा निर्माण प्रक्रिया को स्वचालित किया जा सकता है। इससे एकल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर व सभी घटकों को एकीकृत करने का विचार आया, जिससे 1960 के दशक के शुरुआत में लघु स्तरीय तथा 1960 के दशक के अंत तक मध्य स्तरीय और उसके बाद VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। 2008 में अरबों ट्रांजिस्टर वाले प्रोसेस व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो गए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योगों की बात करें तो भारत में इसका प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ा जा रहा है। वेल इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का विकास 1950 के दशक में हुआ, जिसने सेमीकंडक्टर उद्योग के क्षेत्र में एक बाढ़ सी ला दी। इसके द्वारा निर्मित उपकरणों का उपयोग इसरो, DRDO आदि में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हालांकि 1990 के दशक तक बाद बड़े उद्योग पैमाने पर पूर्वी एशिया में स्थानांतरित हो गए। वहां माइक्रोचिप के बड़े पैमाने पर उत्पादन के शुरुआती आंदोलन के साथ शुरू हुआ, क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में सस्ता श्रम और बढ़ती तकनीकी परिष्कार व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए। दुनिया के विकसित देश इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना अधिक महत्व देते हैं, माना जाता है कि 1990 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में लोकप्रिय हो गए थे। उसके बाद साल दर साल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रचार उपयोग इस बिंदु तक बढ़ता जा रहा है जहां यह भारत के लगभग सभी कामों के लिए जिम्मेदार है।
1: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य, अभी हम ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी स्वप्ना सिंह। मैंने कहा जाता है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन जब कभी अचानक किसी अपने की तबीयत बिगड़ जाए तो झटपट कैसे भी तुरंत अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं। वहां डॉक्टर पुराने इलाज, दवाइयों या जांच रिपोर्ट के बारे में जब पूछते हैं तो कई बार कागज घर पर भूल जाते हैं या फिर समय पर मिलते ही नहीं। तो ऐसी ही समस्याओं का समाधान लेकर आया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस मिशन के अंतर्गत हर नागरिक अपना आभा नंबर बनवा सकता है, जो एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है। इसमें आपकी स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी, जैसे डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट और इलाज का रिकॉर्ड, आपकी अनुमति से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है बहनों कि यदि आपको इमरजेंसी में किसी दूसरे शहर में या किसी नए अस्पताल में इलाज करवाना पड़े तो वहां जांच कराने या पुरानी फाइलें ढूंढने की परेशानी कम हो सकती है। डॉक्टर आपका पुराना रिकॉर्ड देखकर बेहतर इलाज दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपकी अनुमति के बिना आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड कोई नहीं देख सकता, क्योंकि इसमें आपकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस सुविधा को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने का प्रयास है स्वस्थ शरीर, सुरक्षित स्वास्थ्य रिकॉर्ड और सही समय पर सही इलाज। यही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य। तो आप जागरूक बने, स्वस्थ रहें और हमारे साथ गुनगुनाएं ये प्यारा सा गीत।

कश्मीर की कली। इस फिल्म का गीत हमने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में सुना। एस एच बिहारी के गीत को संगीत से सवारा था ओपी नैयर ने। और बहनों जानती हैं, हम अपने पूरे जीवन काल के दौरान इतनी लार पैदा करते हैं जिससे दो स्विमिंग पूल भर जाएं। हमारे बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि खूब ज्यादा और जल्दी जल्दी भोजन करने के बाद हमारी सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। हमारी जीभ स्वाद बताने के अलावा और भी महत्वपूर्ण काम करती है। इसके बिना ना तो आप खा सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं और ना थूक सकते हैं। जीभ हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है और ये अकेली ऐसी मांसपेशी है जिसका सिर्फ एक सिरा ही जुड़ा होता है। बहनों, हम सभी अपने बालों को संवारने खूब जतन करते हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक बाल 3.5 औंस वजन ही सह सकता है। ये अधिक ठंड, मौसम में बदलाव और पानी से भी नष्ट नहीं होता। और हमारी त्वचा के हर इंच हिस्से पर 32 करोड़ बैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन बहनों, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें से अधिकांश निरापद होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ये तो थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। और अब इतना ही कहूंगी कि जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी से नहीं होता। कभी वक्त चुनता है रास्ता तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दमयंती वाजपेयी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है रामकुमार प्रजापति और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।
6: के मोहन ने बांसुरी की दारी मोहनिया,

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं राम कुमार प्रजापति और साथियों द्वारा गाए लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम कुमार प्रजापति और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है योगेंद्र कुमार द्वारा गाए गीत। प्रस्तुत है एक ठुमरी गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे योगेंद्र कुमार द्वारा गाए ठुमरी और दादरा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जिसमें पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं शान और शांतनु मैत्रा की आवाज़ में फिल्म थ्री इडियट्स से।

शांतनु मोहित्रा का संगीत स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल। शान और शांतनु मोहित्रा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म थ्री इडियट से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म बिल्लू से। आवाज़ है सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कड़ और मुनाली ठाकुर की।

0: प्रीतम के संगीत गुलजार के लिखे बोल, सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कड़ और मोनाली ठाकुर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बिल्लू से। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा निर्मित किया गया है। 5,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर से शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूह के क्षमतावर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। वे करीब 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 109 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के निर्दोष शहीदों को न्याय दिलाने के लिए अदम्य साहस, धैर्य और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान को लगातार अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। इस अभियान के तहत बालाघाट पुलिस को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सम्मानित किया है। जिले के 1,204 स्कूलों के 1,25,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति की शपथ ली, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन इस अभियान में भाग लिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों से इस अभियान से जुड़कर नशा मुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम भारत की खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं करता है। इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और किसानों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करना है। भारतीय खाद्य निगम के चावल का एथेनॉल उत्पादन में उपयोग किए जाने के संबंध में हालिया

दावों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा दायित्वों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में अति भारी बारिश तथा नीमच, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने जिले में सड़क सुरक्षा मानकों को मजबूत करने, ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा और दुर्घटना घटाने के उपायों पर चर्चा की। आगरमालवा कलेक्टर ने नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी देवी लोक निर्माण के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए हर घर जल योजना के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता में पूरे करने के निर्देश दिए। जबलपुर जिले में ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत जांच दल बिना पूर्व सूचना के पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता की सघन जांच करेंगे। प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब भवन निर्माण से जुड़े अधिकांश मामलों में कई विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। और प्रदेश से हज 2027 के लिए 5,998 यात्रियों का चयन किया गया है। प्रदेश से 10,058 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक

0: 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन

0: के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस ऑपर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल SDF ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल छनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
3: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते

0: जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। इस कार्यक्रम में हम आपके पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपके पसंदीदा नगमे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेटा फिल्म के गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की तरफ से। बरेली कैंट रेलवे कैबिन के पास शनिहट्टी बरेली से हमें लिखा है विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए, ये प्रस्तुत है बेटा फिल्म का ये गीत।

आनंद मिलन का संगीत, समीर के लिखे बोल, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बेटा से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में फिल्म सौदागर से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। ग्राम जसवाड़ी से हमें लिखा है दुर्गेश नागनपुरी, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढकसे ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी और प्रकाशवीर राजपूत, डूंडी लोहारा बलोद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, और जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

और इस गीत की फरमाइश जो हमें मिली है वो हमें प्राप्त हुई है उज्जैन से, नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, हीरालाल खैराजानी, पुष्पा और गौरव खैराजानी की ओर से। इसके अलावा

आरडी बर्मन का संगीत गुलजार के लिखे बोल, वनिता मिश्रा, गुरप्रीत कौर और गौरी बापट की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मासूम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आराधना और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है पाकुड़ झारखंड से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्नव आनंद और सत्यम आनंद की ओर से। इसके अलावा एक पत्र मिला है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, अभयानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की तरफ से। सपना संगीता रोड इंदौर से लिखा है लीला फतेह चंदानी, लाल फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

एस डी बर्मन का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म आराधना से। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में हीर रांझा से आपको सुनवा रहे हैं, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की ओर से। इसके अलावा हमें पत्र मिला है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक का, मोपका भाटापारा से भवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू का, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर और प्रणीता गवाड़कर की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: मदन मोहन का संगीत कैफ़ी आज़मी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हीर राँझा से। और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में इसी तरह अपने पत्रों को भेजते रहिए और अपनी फरमाइशें करते रहिए। इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री

0: डॉक्टर मोहन यादव आज झाबुआ जिले के थानला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूह के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के निर्दोष शहीदों को न्याय दिलाने के लिए अदम्य साहस, धैर्य और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान को लगातार अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। इस अभियान के तहत बालाघाट पुलिस को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सम्मानित किया है। जिले के 1204 स्कूलों के 125,000 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति की शपथ ली और सरकार ने स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम भारत की खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं करता है। इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और किसानों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब हम आपको आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा प्रसारित होगी रात 8:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में सुन सकेंगे रात 8:15 पर। कार्यक्रम खेल जगत सुनिएगा आज रात 9:30 पर। और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी आज रात 10:00। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन, वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की और एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय महाविद्यालय ग्राउंड थांदला जिला झाबुआ में आयोजित स्वसहायता समूह के क्षमतावर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में चयनित दिव्यांगजनों को मॉडिफाइड मोटरसाइकिल भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष प्लस 110 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवप्रीत सिंह को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि श्री सिंह के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित किया है। मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान जनगणमन का गायन 3 अगस्त को प्रातः 10:15 पर किया जाएगा। 1 और 2 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के कारण राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का आयोजन 3 अगस्त को होगा। और मौसम विभाग ने आज रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में अति भारी बारिश और नीमच, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:02 हुए हैं। आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र के योगदान से सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो हमारी आज की पहली जानकारी होगी मुंशी प्रेमचंद जयंती पर। साथियों, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महान कथाकार थे। उनकी जयंती 31 जुलाई यानी आज ही के दिन मनाई जाती है। उनका जन्म सन 1880 में वाराणसी के पास हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। साथियों, प्रेमचंद ने समाज की सच्चाई को अपनी कहानियों में दिखाया। वे गरीब और किसानों के जीवन के लेखक थे। साथियों, उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली थी, इसलिए उनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। साथियों, गोदान उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ये किसानों के जीवन का सजीव चित्रण करता है। साथियों, ईदगाह उनकी प्रसिद्ध कहानी है। ये त्याग और प्रेम का सुंदर संदेश देती है। साथियों, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनका विशेष स्थान है। साथियों, उनकी रचनाएं हमें ईमानदारी और मानवता की सीख देती हैं। वे समाज सुधार के समर्थक थे। साथियों, हमें प्रेमचंद के आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका साहित्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मुंशी प्रेमचंद जयंती पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी। ईस्टर द्वीप की मुआई प्रतिमाएं चिली ऐतिहासिक

ऐतिहासिक स्थल विषय पर। साथियों, ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये चिली देश का एक प्रसिद्ध द्वीप है। साथियों, ईस्टर द्वीप पर लगभग 900 मोआई प्रतिमाएं हैं। इनका आकार और वजन अलग अलग है। साथियों, मोआई विशाल पत्थर की मानव आकृति वाली प्रतिमाएं हैं। ये दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। साथियों, इन प्रतिमाओं का निर्माण रापा नुई लोगों ने किया था। इन्हें लगभग 1250 से 1500 ईस्वी के बीच बनाया गया। साथियों, अधिकांश मोआई ज्वालामुखीय पत्थर से बनी है। इन्हें बड़े कौशल से तराशा गया था। साथियों, माना जाता है कि ये प्रतिमाएं पूर्वजों के सम्मान में बनाई गई थीं। इन्हें पवित्र माना जाता था। साथियों, अधिकांश मोआई प्रतिमाएं गांवों की ओर मुख करके खड़ी हैं। इन्हें सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथियों, इन प्रतिमाओं को कैसे स्थानांतरित किया गया, ये आज भी शोध का विषय है। इस रहस्य ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। साथियों, ईस्टर द्वीप का ये क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मोआई प्रतिमाएं मानव इतिहास की अद्भुत धरोहर हैं। इनके संरक्षण का कार्य लगातार किया जा रहा है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी ईस्टर द्वीप की मोआई प्रतिमाएं चिली ऐतिहासिक स्थल विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सुनवा देते हैं आपको वार्ता सोशल मीडिया के प्रभाव एवं दुष्प्रभाव विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगे शिव सेवक तिवारी।
1: आज का युग विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इंटरनेट ने दुनिया को एक वैश्विक परिवार में बदल दिया है और सोशल मीडिया ने इस परिवर्तन को और अधिक गति प्रदान की है। आज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और कुछ ही सेकंड में वह दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जुड़ सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम जैसे अनेक सोशल मीडिया मंच हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इनका प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, व्यापार, राजनीति, संस्कृति, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन तक फैल चुका है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी तकनीक की तरह सोशल मीडिया भी एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों। सबसे बड़ा लाभ और तेज और सरल संचार है। पहले किसी दूर रहने वाले व्यक्ति से बात करने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज वीडियो कॉल, चैट और वॉइस मैसेज के माध्यम से कुछ ही क्षण में संपर्क स्थापित हो जाता है। इससे परिवारों और मित्रों के बीच की दूरी बहुत कम हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ शिक्षा के क्षेत्र से है। आज लाखों विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विशेषज्ञों के व्याख्यान सुनते हैं तथा नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सोशल मीडिया और इंटरनेट ने शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा लाभ रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र से है। छोटे व्यापारी अपने उत्पादों को प्रचार कम लागत में कर सकते हैं। किसान अपनी उपज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कलाकार, लेखक, गायक और अन्य प्रतिभाशाली लोग अपनी कला को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेक युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वरोजगार और नए व्यवसाय की शुरुआत की है। सोशल मीडिया समाज में जागरूकता फैलाने का भी प्रभावी माध्यम है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, रक्तदान अभियान, पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, मतदान जागरूकता और सरकारी योजनाओं की जानकारी कुछ ही मिनट में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, जिसका मुख्य कारण सोशल मीडिया है। प्राकृतिक आपदाओं को समय राहत कार्य और सहायता पहुंचाने में भी सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में सोशल मीडिया ने लोगों को नई सुविधाएं दी है। संगीत, फिल्म, नाटक, हास्य कार्यक्रम और ज्ञानवर्धक वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को अपनी रुचि के अनुसार सामग्री देखने और सीखने का अवसर मिलता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में। सबसे गंभीर समस्या है सोशल मीडिया की लत, जो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। आज अनेक लोग दिन के कई घंटों मोबाइल तथा लैपटॉप पर बिताते हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव विद्यार्थियों और युवाओं पर पड़ रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान भटकता है, समय की बर्बादी होती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है। दूसरी बड़ी समस्या है फर्जी समाचार और अफवाहें। बिना सत्यापन के किसी भी संदेश को या किसी भी समाचार को साझा कर दिया जाता है। इससे समाज में भ्रम, भय और कभी कभी हिंसा जैसी घटनाओं का खूब प्रचार प्रसार होता है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि कोई भी समाचार को साझा करने से पहले यह जान ले कि यह सत्य है या असत्य है। तीसरी समस्या है मानसिक स्वास्थ्य। आज के टाइम पर सबसे बड़ा सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हीन भावना, तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका सीधा कारण सोशल मीडिया है। लाइक्स और फॉलोअर्स की होड़ में कई युवा मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध में काफी तेजी से वृद्धि आई है। फर्जी प्रोफाइल बनाना, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक खातों से ठगी, पहचान की चोरी और साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड और बैंक संबंधी जानकारियों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। लंबे समय तक मोबाइल देखने से आंखों की जलन, सिर दर्द, गर्दन और कमर में दर्द, नींद की कमी, अवसाद तथा मोटापा जैसी समस्याएं हो रही हैं। यदि बच्चे, युवा खेलकूद से दूर होकर केवल मोबाइल में समय बिताएंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होगा। सामाजिक जीवन पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। पहले परिवार के सदस्य साथ बैठकर खाना खाते थे, बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन आज कई बार एक ही घर में सभी लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इससे आपसी संवाद और भावनात्मक जुड़ाव कम होता जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, अब प्रश्न यह है कि सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। प्रतिदिन सोशल मीडिया के लिए एक निश्चित समय आवंटित किया जाना चाहिए। उससे निश्चित सीमा से अधिक समय नहीं देना

चाहिए। पढ़ाई, नौकरी और परिवार को प्राथमिकता देना चाहिए। केवल विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। किसी भी अफवाह या भ्रमक संदेश को सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक उसकी सत्यता की जाँच न हो जाए। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए जिससे बैंक और बैंक से संबंधित धोखाधड़ी करने से बच सकते हैं। हमें प्रतिदिन कुछ समय खेल, व्यायाम और अपने पुस्तक पढ़ने पर भी देना चाहिए जिससे हमारी अच्छी आदतों का विकास होगा और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से हम बच सकेंगे। सोशल मीडिया आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन अवश्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सोशल मीडिया के उपयोग में सब कुछ भूल जाएं। आइए हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी, हम संयम और सकारात्मक सोच के साथ ही करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका सकारात्मक सोच के साथ उपयोग नहीं करते तो यह हमारे लिए बहुत सारे दुष्प्रभाव छोड़ता है। आज का युग सूचना क्रांति का युग है, विज्ञान और तकनीक का युग है, मानव जीवन को अभूतपूर्व गति प्रदान करने का युग है। इंटरनेट और स्मार्टफोन ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ ही सेकंड में अपने विचारों, भावनाओं, चित्र, वीडियो और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी शक्ति और यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कुछ वर्ष पहले तक समाचार प्राप्त करने के लिए लोग समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन पर निर्भर रहते थे। आज वही समाचार कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाता है। सोशल मीडिया ने सूचना के आदान प्रदान को इतना तेज बना दिया है कि किसी भी घटना की जानकारी कुछ ही मिनट में हमें सबको लग जाती है। प्रिय श्रोताओं, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव संचार के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। पहले दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के लिए हमें कठिन मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और संदेश के माध्यम से हम दूरस्थ बैठे हुए व्यक्ति से मिनटों में जुड़ जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया ने क्रांति ला दी है। आज विद्यार्थी घर बैठकर देश विदेश की पढ़ाई को पढ़ रहा है। कठिन से कठिन विषयों को वो सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पढ़ पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ऑनलाइन नोट्स, लाइव कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय और शैक्षणिक वीडियो ने सीखने की प्रक्रिया को सरल, सीमित और सुलभ बना दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के भी विद्यार्थी अब इसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं। रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का बहुत अधिक महत्व है। युवा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई संगीत सिखा रहा है तो कोई खेल सिखा रहा है, कोई नृत्य सिखा रहा है तो कोई व्यापार सिखा रहा है, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना किसी धन किए बिना तकनीकी क्षेत्रों से जुड़कर वह चीजों को सीख रहा है। आपदा प्रबंधन और सामाजिक सेवाओं में भी सोशल मीडिया की भागीदारी बढ़ती जा रही है। आज बाढ़, भूकंप, महामारी या कोई प्राकृतिक आपदा आने से पहले सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी यह आभास या ज्ञान हो जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। चित्रकला, संगीत या इसके साथ साथ किसी अन्य विशिष्ट कला को भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम आसानी से सीख सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी सोशल मीडिया का ही महत्वपूर्ण अहम रहा है। नागरिक अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। सरकार भी अपनी योजनाओं और नीतियों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रही है, लेकिन जहां इतने लाभ हैं वहीं इसकी कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना और संभल कर उनसे चलना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया की लत बन चुकी है। लत का मतलब होता है किसी चीज की आदत, अर्थात आज के युवा सोशल मीडिया के आदत में पड़ चुके हैं। वह सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में जानते हुए भी वह उस पर अधिक समय बिता रहे हैं, जिससे मन भ्रमक बीमारियां और मन न लगना, एकाग्रता की कमी आना, शारीरिक क्षमताओं में कमी आना जैसे दुष्प्रभाव देखने को हमें मिल रहे हैं। दूसरी समस्या यह होती है कि वह इस लत से बाहर निकलने के लिए काफ़ी परेशानी उठाते हैं, फिर भी वह इस लत से नहीं निकल पाते। इसलिए हमें सोशल मीडिया का उपयोग करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसकी लत ना लगे। मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम आंकना, लाइक्स और फॉलोअर्स की चिंता करना या किसी सोशल मीडिया के या किसी साइबर बुलिंग के से तनाव, चिंता और मानसिक रूप से अवसाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चों और किशोरों पर इसका प्रभाव और अधिक होता है क्योंकि वह इस बात को जानते नहीं है। वह सोशल मीडिया के प्रभाव और दुष्प्रभावों को अच्छे से नहीं समझते, जिससे उन पर काफ़ी अधिक समस्या उत्पन्न होती है। यदि वे बिना निगरानी के सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो उनकी पढ़ाई, व्यवहार और व्यक्तिगत रूप से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए अभिभावकों

0: कि यह जिम्मेदारी होती है कि बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों के बारे में बताएं, ताकि जिससे सिर्फ उसके प्रभावों का आकलन करके उसके लाभ को लिया जा सके, हानि को नहीं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता सोशल मीडिया के प्रभाव एवं दुष्प्रभाव विषय पर, जिसमें वार्ताकार थे शिव सेवक तिवारी। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बागी से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी मोनाली ठाकुर की, गीतकार थे कुमार और संगीत से सजाया था मीत ब्रदर्स ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम दे देते हैं आपको एक और जानकारी नशा मुक्ति और युवा विषय पर। साथियों, नशा युवाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।

है, ये शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। साथियों, नशे की लत भविष्य को अंधकारमय बना सकती है, इससे शिक्षा और करियर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथियों, युवाओं को नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए, स्वस्थ जीवन ही सफलता का आधार है। नशा परिवार और समाज में समस्याएं बढ़ाता है, इससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। साथियों, खेल, योग और व्यायाम नशे से बचने में मदद करते हैं, ये शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। साथियों, अच्छे मित्र और सकारात्मक संगति भी बहुत महत्वपूर्ण है, सही वातावरण गलत आदतों से बचाता है। साथियों, नशा छोड़ने के लिए परिवार और समाज का सहयोग आवश्यक है, समय पर परामर्श और उपचार लाभदायक होता है। साथियों, सरकार और विभिन्न संस्थाएं नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं, इनका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। साथियों, नशा मुक्त युवा ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है, वे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो साथियों, आइए नशा को ना कहें और स्वस्थ जीवन अपनाएं, यही उज्जवल भविष्य की सही राह है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी नशा मुक्ति और युवा विषय पर। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, पद की संख्या है 119। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.rrb.apply.gov.in पर विजिट करें। साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा करने लगी हैं आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपने मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र के योगदान से अभी आपने सुना युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: ये

0: डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।

अंतराल का समय पूरा हुआ, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में धरती फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में गुलजार का लिखा ये गीत। आर डी बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है इजाजत।

गोपी किशन फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में। आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है समीर ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुर।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुमन कल्याणपुर कमल बारोट की आवाजों में बरसात की रात फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है रोशन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in।
3: प्लास्टिक पॉलिथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलिथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वसहायता समूह के क्षमतावर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की और एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार प्रदेश में कुल 5,67,21,353 मतदाता हैं और पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत का आज निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। पंत दादा के नाम से प्रसिद्ध कैलाश चंद्र पंत ने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के लिए समर्पित किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी।
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी।
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी।
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800440

0: 9 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि यह नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर, मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
2: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
3: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत

0: के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
0: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
1: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
0: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: अरे मिनट
0: कहाँ चले आ रहे हो? हैं देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता यह था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुराने

0: यानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
2: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
3: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
3: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
4: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शततल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
0: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
4: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
0: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
6: लयात्मक प्रस्तुति।
5: शीर्षक है
6: अभी न होगा मेरा अंत।
5: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

सबसे पहले सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। धुन आर डी बर्मन की है, फिल्म का गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

अभी आपने जावेद अख्तर का लिखा ये गीत सुना 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से, और अब आपको सुनवा रहे हैं शिव हरि के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की गीत रचना, आवाज आशा भोसले और विनोद राठौर की है। फिल्म का नाम है चांदनी।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज में अब सुनते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना, संगीत शिवहरी का।

श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि बरसात के मौसम में आप बाहर जाकर भले ही न भीग रहे हों, लेकिन इन गीतों के जरिए आपका मन जरूर भीग रहा होगा। जी हाँ, तो चलिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये दिल लगी फिल्म का गीत। लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ है। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अब सुनते हैं समीर की ये गीत रचना। आवाजें कुमार सानू और साधना सरगम की है। फिल्म का नाम है दामिनी।

बरखा है, बरसात है, हरियाली है, बादल है, मेघ है, सावन है, झूला है, काली घटा भी है, सब कुछ है इस मौसम में। साथ ही है गर्मा गर्म चाय, पकोड़े, समोसे और भुट्टी जैसे चटकीले व्यंजन। ये सब कुछ एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखिए।

0: दामिनी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। समय है एक अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।

0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाऊ थी।
3: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
2: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
3: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
2: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
3: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
2: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
3: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9-4-2-5-7-0-2-7-6-8। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
2: 9-4-2-5-7-0-2-7-6-8।
3: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
2: तो सुनना न भूले हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
4: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9-4-2-5-7-0-2-7-6-8। एक बार फिर से सुनिए 9-4-2-5-7-0-2-7-6-8। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030

31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जाँच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रिड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओ, 7:05 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 7:21 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8 बजे रिले करेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुने कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:35 और 9:45 पर।

0: 9:30 पर खेल जगत कार्यक्रम में आज सुनवाएंगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। इस विषय पर डॉक्टर अभिनव साठे से मनीष गजबिये की ली गई भेंट वार्ता। रात 10 बजे होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुन सकेंगे श्रुति अधिकारी का संतूर पर बजाया राग मधुकौंस। ये थी जानकारी हमारी इस सभा के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की और अब कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल प्रातःकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5:53 पर। 7:20 पर होगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा फिल्म संगीत का ये विशेष कार्यक्रम होगा 8:30 पर और 10:05 पर होगा गीत सागर। 9:15 पर लोक संगीत में बुंदेली लोकगीत सुनवाएंगे, कलाकार होंगे भुवनेश गोस्वामी। 9:30 पर विज्ञान लोक में कल आप सुन सकेंगे डॉक्टर शालिनी मित्रा की वार्ता विज्ञान की उपयोगिता। फिल्म संगीत 9:45 पर। 9:45 का नियत समय है सुबह 10 बजे का और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल आप सुनेंगे बसीर खान का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव। 11:00 का प्रसारण 11 बजे से किया जाएगा और कल आप सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम बात आपके गीत हमारे। आपकी फरमाइश कल दिन में 12 बजे और 2:30 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 17वीं कड़ी 12:30 पर। आकाशवाणी के रीवा केंद्र के योगदान से कल दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम 1:30 पर। लोक संगीत सुगम संगीत 1:45 पर और शाम 5:02 पर कार्यक्रम युववाणी। कल दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत। कल शाम 5 बजे मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी जिसके अंतर्गत फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:33 पर शाम 6 बजे, 6:45 पर और रात 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का समय रहेगा शाम 6:30 का। कल शाम 7:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कल रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे प्रोग्राम इस सप्ताह संसद में सुर्खियों में 8:15 पर। दिल्ली केंद्र से कल रात 9:30 पर साहित्य भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे जिसमें कल आप सुनेंगे कर्नाटक वोकल ड्यूट कलाकार होंगे चिन्मय सिस्टर उमा और राधिका। अभी आप सुन रहे थे हमारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झाबुआ में स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्पर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय ऑफशोर एक्सप्लोरेशन योजना को भी स्वीकृति दी। इस योजना पर 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा निर्मित किया गया है। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज झाबुआ जिले के थानला में आयोजित प्रदेश स्तरीय स्व सहायता समूहों के क्षमतावर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और उनके उत्पादों की सराहना की। उन्होंने चयनित दिव्यांगजनों को मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें भी भेंट की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए किसानों से संवाद किया तथा विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए।
2: हमारे इसी थानला में पक्का हेलीपैड बनाया जाएगा। अपने इसी थानला के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने वाले खिलाड़ियों के लिए हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और पद्मावती नदी पर घाट भी बनाया जाएगा। अभी पट्टे जो दिए गए इन पट्टों की पक्की रजिस्ट्री भी निशुल्क आपके लिए कराई जाएगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की और एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर के नवाचार समाज की जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत रचनात्मकता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी शामिल होती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए चुनौतियों के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाले नव प्रवर्तकों के प्रयासों की सराहना भी की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। धार में ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पीछे निर्धारित स्थान पर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के बीच बनी सहमति के अनुसार की गई। नमाज के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और बारिश के कारण गीली जमीन पर तिरपाल भी बिछाई गई। इससे पहले कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन को निजी बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर प्रशासन ने उनकी बात सुनने का आश्वासन दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार प्रदेश में कुल 5,67,21,353 मतदाता हैं, जिनमें 1,60,50,984 शहरी और 4,06,70,369 ग्रामीण मतदाता शामिल हैं। आयोग ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय और

पंचायत चुनावों में इसी अंतिम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सीमा कालीरमन और पुरुषों की 110 किलोग्राम से अधिक भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवप्रीत सिंह को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों का प्रभावी समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों के एम्पैनलमेंट की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक योग्य स्वास्थ्य संस्थानों को इस योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने ये निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड अस्पतालों के क्लेम का भुगतान निर्धारित समय सीमा में किया जाए। पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत का आज निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। पंत दादा के नाम से प्रसिद्ध कैलाश चंद्र पंत ने अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के लिए समर्पित किया। भोपाल के हिंदी भवन को साकार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके निधन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और साहित्यकारों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस वर्ष उन्हें हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर तेज रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में अति भारी बारिश तथा नीमच, आगरमालवा, उज्जैन, देवास, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कोलारस में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संवाद योजना के तहत प्रस्फुटन समितियों के विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन किया गया। शहडोल में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत हाट बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निवाड़ी और जबलपुर में 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रों का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। नीमच के ग्राम बमोरी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आयुष विभाग द्वारा कल निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के शासकीय MLB उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल ने उल्लास एक अभिनव प्रयास अभियान के तहत पौधरोपण किया। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बैठक लेकर कृषि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर पात्र किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। आगरमालवा के सुसनेर जनपद पंचायत में कल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत होगी। गुना जिले के नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त रखी गई है। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मिर्दाखेड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र में सुक्ता और आवना नदी के बीच स्थित हाथीकुंड टापू पर फंसे 4 युवकों को SDERF की टीम ने 10.5 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झाबुआ में स्वसहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए और राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों, अपने देश की साहित्यिक परंपरा बहुत ही समृद्ध रही है। देश के अनेक महान साहित्यकारों ने समाज को नई दिशा देने को काम करो, ऐसे ही महान साहित्यकारों में मुंशी प्रेमचंद को जो नाम है बड़ी प्रमुखता से लग जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में आम आदमी के जीवन के संघर्ष, गरीबी, किसान, मजदूर, महिलाओं, बच्चों और समाज में व्याप्त असमानताओं को बड़ी ही सजीवता से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के मन को छूती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि समाज को समझने और उसे बेहतर बनाने का माध्यम भी है। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता का नाम अजायब राय था और जो कि डाक विभाग में कार्यरत थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। भैया, चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम और सुनते हैं जी संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भैया, आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपका पुनः स्वागत है और अपन चर्चा कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। भैया, मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन जीवन आर्थिक कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने शिक्षा और साहित्य के प्रति अपने लगाव को बनाए रखा। परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व को गहराई दी और आगे चलकर यही अनुभव उनकी कहानी और उपन्यासों में अपन को दिखाई देने लगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय के नाम से की थी। उनकी आरंभिक रचनाओं में देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। उनकी पुस्तक सोज ए वतन अंग्रेजी शासन की नज़र में आ गई और उसकी प्रतियां जब्त कर ली गईं। इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। उनके साहित्यिक में कल्पना की दुनिया की बजाय समाज का वास्तविक जीवन दिखाई देता है। उनके साहित्य में गांव, खेत, किसान, मजदूर, गरीब परिवार, साहूकार, जमींदार, महिलाएं, बच्चे और मध्यम वर्ग के लोग दिखाई देते हैं। उनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भारतीय किसान के जीवन की समस्याओं का महत्वपूर्ण चित्रण है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ ईदगाह, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा प्रमुख हैं। भैया, चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम और सुनते हैं जी संदेश।

मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों के मनोविज्ञान को अच्छे से समझा। ईदगाह और दो बैलों की कथा जैसी कहानियाँ बच्चों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। उनकी रचनाएँ बच्चों को सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनाती, बल्कि प्रेम, त्याग, मित्रता, साहस, ईमानदारी, संवेदना जैसे मूल्यों की शिक्षा तो देती हैं। इसलिए विद्यालयों में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का विशेष महत्व है। मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उनकी रचनाओं को केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा न मानकर जीवन और समाज को समझने का माध्यम बनाएं। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य हमें बेहतर इंसान बनने का, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का, समाज में समानता, प्रेम तथा मानवता स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भैया रोज चर्चा अपनी चलती रहेगी और अपन जानते हैं कि अपने सावन लग गए हैं, तो आज अपन सुनते हैं सावन को पहले लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भैयानों, आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है। भैयानों, अपन देख ही रहे हैं कि अपनी जो जनसंख्या लगातार बढ़त जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा हुआ है और मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता घटती जा रही है, साथ ही साथ अपने जो भूजल स्तर है वो भी गिरते जा रहा है। ये सब कारण है अपने कि अपन अपनी खेती किसानी में जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। जाके अलावा इन सब के प्रयोग से अपन जो पर्यावरण भी है वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो ऐसे समय में जैविक खेती को अगर अपन उपयोग करेंगे तो वो टिकाऊ खेती को एक महत्वपूर्ण विकल्प बन के अपने सामने आई है। भैया, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जहाँ में रासायनिक उर्वरकों और हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों पर अपन बिल्कुल कम उपयोग करते हैं। बाकी जगह अपन जैविक खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक तथा प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों को अपन उपयोग करते हैं। जैसे कहा है कि अपनी फसल की जो पैदावार है वो अच्छी होती है और जाके अलावा अपनी जो मिट्टी है, पानी है, पर्यावरण है और जो अपनी आर्थिक स्थिति है वो लंबे समय तक अपनी सुरक्षित रहते हैं। भैया, जैविक खेती वो पद्धति है जाके अंतर्गत अपन गोबर, फसल अवशेष, पत्तियाँ, कृषि अवशिष्ट जो होते हैं इनसे अपन कहा है कि कंपोस्ट और जैविक खाद तैयार कराते हैं। और जैविक खेती में अपन फसल चक्र को भी अपना सिखाते हैं कि भैया एक फसल के बाद जैसे कम पानी चाहने वाली जो फसल है बाकी के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसलें लगा लें तो जैसे कहा है कि अपने को फायदा होता है। जाके अलावा मिश्रित खेती कर सकते हैं, हरी खाद, जैविक कीटनाशक, जैव उर्वरक और प्राकृतिक संसाधनों को अपन उपयोग कर सकते हैं। जैसे कहा है कि मिट्टी को उत्पादन का माध्यम ना मानकर अपन एक जीवंत संसाधन के रूप में वायु पर संरक्षित कर सकते हैं। टिकाऊ खेती को अर्थ होते हुए कि जय अपन जो वर्तमान पीढ़ी है बाकी खाद्य आवश्यकताओं को तो पूरा करे ही करे, साथ ही साथ अपनी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं बिन के लाने भी अपन प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सके। भैया, अगर अपन जैविक खाद को उपयोग करेंगे तो वासे अपन को बहुत फायदा है। अपनी खेती किसानी में जैविक खाद को उपयोग करने से या कंपोस्ट को अपन उपयोग करते हैं या हरी खाद को उपयोग करते हैं तो जो जैविक पदार्थ वो

0: करते हैं तो जा से कहा है कि अपनी जो माटी की संरचना है वो अच्छी होते हैं। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होने से मिट्टी और जल स्रोतों का प्रदूषण का दबाव भी घट जाता है। जाके अलावा जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी पानी को अच्छे ढंग से रोक सकते हैं। जैसे कहा है कि अपनी सिंचाई की जो आवश्यकता है वो कुछ कम हो जाती है। और जैसे कहा है कि अगर अपन जैविक खेती किसानी को अगर अपन उपयोग करेंगे, जैविक खादों को उपयोग कराते हैं, तो वैसे कहा है कि जो अपने उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है। और अपन देख ही रहे हैं कि आजकल जैविक जैविक जो उत्पादन है बाकी मांग भी बहुत बढ़ गई है। तो जैसे कहा है कि जब जाके मांग बढ़ रही है तो जाके दाम भी अपन को अच्छे मिलते हैं। तो जाए अपन अगर अपन प्रमाणीकरण और लेबलिंग कर बाजार के नियमों को पालन कर अपन बेचें तो अपन अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और टिकाऊ खेती के साथ साथ अपन पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन जे छोटे छोटे व्यवसाय भी जोड़ सकते हैं। अब अपन देखा था ना कि कई किसान भैया अपनी खेती किसानी के साथ मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मुर्गी पालन को भी व्यवसाय कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि उनकी आय भी बढ़ रही है। भैया और चर्चा अपनी चलत रहेगी। आप सुनते हैं भेंट वार्ता जाको विषय है तिल की उन्नतशील प्रजातियाँ और जाके बारे में आपको बताएंगे BS कंसाना और भेंट करता है सोहन सिंह। तो सुनत जे भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, ज्वार और बाजरा के बाद अपने चंबल संभाग में तिल की फसल बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है। तिल की फसल के लिए किस तरह की भूमि की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी इस क्षेत्र के लिए प्रचलित प्रजातियां हैं और कौन कौन सी नई प्रजातियां आ रही हैं जिन्हें हमारे किसान भाई लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं वैज्ञानिक BS कंसाना। कंसाना साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कंसाना साहब, हमारे किसान भाई जहाँ पर तिल की फसल लेना चाहते हैं उन्हें क्या क्या कृषि क्रियाएँ करनी चाहिए जिससे जो उत्पादन है वो अच्छा मिले?
2: तिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहन फसल है जो हमारे क्षेत्र में बहुतायत में उगाई जाती है। खरीफ मौसम में तिल की फसल बिना लागत की फसल के रूप में प्रचलित है और ज़्यादातर किसान भाई इसे अपनी वर्षा आधारित जो भूमियां हैं जहां पर उनको पानी के लिए कोई साधन नहीं है वहां इस फसल का बहुतायत में प्रयोग करते हैं और उससे उत्पादन लेते हैं। इस फसल के साथ एक और जो जुड़ी हुई समस्या है वो ये भी है कि इस फसल के उत्पादन कार्यक्रम लेते वक्त किसान भाई सिर्फ बीज का उपयोग करते हैं और वो भी अमानक बीज जो उनके आसपास आसानी से उपलब्ध है उस बीज का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से फसल में उत्पादकता जो है हमें बहुत कम प्राप्त होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल तेल की दृष्टि से, साथ ही साथ जो सुगंधित तेल बाजार में उपलब्ध हैं उनमें भी तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है, साथ ही बेकरी उत्पादों में या साबुन बनाने में, इन चीज़ों को बनाने में भी तिल का बहुत आयत में प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम तिल की फसल उगाने से पहले ये ज़रूर निर्धारित करें कि हमें किस तरीके की कृषि क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमें तिल की अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त हो और साथ ही कि इसका बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है तो कृषकों को आर्थिक लाभ भी इस फसल से पर्याप्त मात्रा में हो सकता है। पहली चीज़ है किसी भी फसल उत्पादन में वह भूमि का चुनाव सबसे अहम भूमिका रखता है। हमें तिल की फसल लगाने के लिए हमेशा ऐसी भूमियों का चयन करना चाहिए जिनमें कि जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो, क्योंकि अगर ज़मीन में पानी रुकता है या पानी भरता है तो इससे तिल की फसल की उत्पादकता जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है।
1: ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं अपने चंबल संभाग के लिए जिन्हें हमारे किसान भाई उगाएं तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है और उन प्रजातियों की क्या क्या विशेषता है?
2: तिल उत्पादन के लिए हमारे विश्वविद्यालयों ने काफ़ी अच्छी अच्छी प्रजातियाँ विकसित की हैं जो हमारे प्रदेश में और हमारे चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग सभी जगह बहुत अच्छा उत्पादन देने में क्षमता रखती हैं। इनमें सर्वप्रथम JT7 वैरायटी है, यह 1980 में रिलीज प्रजाति है। इस प्रजाति को हमें लगभग 84 दिन लगते हैं उसके पकने में और इसका उत्पादकता जो है वो 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इस प्रजाति की और विशेषताओं में पौधों में शाखाएँ आती हैं और बीज जो है वो सफ़ेद रंग का होता है और फलियां एक के बाद एक आमने सामने दोनों तरफ पौधे

0: में लगती हैं, और इसमें तेल का प्रतिशत जो है वो भी काफ़ी 55% के लगभग इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार एक और प्रजाति जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से विकसित है, JT21, ये 1990 में रिलीज़ की गई प्रजाति है, और इसको परिपक्वता में लगभग 75 से 77 दिन की आवश्यकता होती है। इसलिए जब लेट किसी कारण से हम हो रहे हैं तिल लगाने में, तो इसकी बुआई हम जुलाई के आखिर में भी आसानी से कर अच्छी उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी उत्पादकता भी लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है। साथ ही यह प्रजाति जो लीफ कर्ल बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और स्टेम ब्लाइट बीमारियां हैं इनके प्रति प्रतिरोधी है, और रासायनिक खाद के प्रति ये अच्छा रिस्पॉन्स देती है, और अगर हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इससे अच्छी उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ एक और प्रमुख प्रजाति जो है वो JT22 है, JT22 यह 1995 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा रिलीज की गई है, और यह 78 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादकता भी 7 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें आसानी से प्राप्त होती है, और यह प्रजाति भी लीफ कर्ल के प्रति सहनशील है, साथ ही फाइटोप्थरा ब्लाइट जो कि प्रमुख बीमारी है हमारे तिल क्षेत्रों में उसके प्रति प्रतिरोधी है, और इसमें भी तेल का प्रतिशत लगभग 52.3% के आसपास आता है। इसके अतिरिक्त JT55 ये 1999 में रिलीज की गई प्रजाति है, और इसको उगाने के लिए भी लगभग हमें 75 से 77 दिनों की आवश्यकता होती है, और उत्पादकता भी इसकी 7 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें प्राप्त होती है। यह प्रजाति भी ब्लाइट और स्टेम रूट रॉट जो बीमारियां हैं या बैक्टीरियल रोग हैं उनके प्रति ये सहनशील है या प्रतिरोधी है। इसके बाद एक JTS8 जो कि एक बहुत अच्छी प्रजाति है, ये 2000 में रिलीज हुई है, और ये 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उत्पादकता भी 6 से 6.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें आसानी से प्राप्त होती है। यह किस्म भी फाइटोप्थरा अंगमारी और अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा और बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति सहनशील है, और इसमें तेल की प्रतिशत 52% तक पाई जाती है। इसी के साथ एक और जो नई प्रजाति है 2006 में रिलीज हुई है, यह है PKDS99। इस प्रजाति को उगाने के लिए भी हमें लगभग 70 से 75 दिन की अवधि की आवश्यकता होती है, और इसकी उत्पादकता भी 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई जा सकती है। इस प्रकार यह प्रजाति है PKDS99, ये पत्ती और फली छेदक कीटों के प्रति आंशिक रूप से प्रतिरोधी है, और दाने में तेल की मात्रा लगभग 43 से 50% तक पाई जाती है। एक और जो प्रमुख प्रजाति है 2006 में रिलीज हुई है वह है TKG 306। यह प्रजाति भी 75 से 80 दिन का समय पकने में लेती है। इसकी उत्पादकता अन्य प्रजातियों से थोड़ी कम है, 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, किंतु यह भी जो पत्ती धब्बा रोग है उसके प्रति, बैक्टीरियल ब्लाइट और फाइटोप्थरा ब्लाइट के प्रति सहनशील है, और तेल की प्रतिशत मात्रा भी इसमें 50% तक पाई जाती है।
1: कंसाना साहब, जो भी प्रजाति विकसित की गई हैं उनमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये जो बीमारियां हैं उनके प्रति सेंसिल हैं
0: जी। जैसे कि जब मानसून किसी कारण से लेट होता है, और या हमें मानसून ज़्यादा लगातार पानी गिरने के कारण हम बुआई करने में सक्षम नहीं हो पाते, उस परिस्थिति में देर की अवस्था में भी हम जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक में भी तिल की बुआई आसानी से कर सकते हैं, और इससे अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: तो इसकी जो बीज दर है वो कितनी रखनी चाहिए हमारे पास?
0: तिल की बीज दर यदि हम अकेली तिल की फसल ले रहे हैं तो लगभग 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको अंतः फसल के रूप में किसी दूसरी फसल के साथ उगा रहे हैं तब इसकी बीज दर हम कम करते हैं, और लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज दर हमें अंतः फसल पद्धति में इसकी रखनी चाहिए।
1: जैसे दूसरी फसलों के बीजों को उपचारित करते हैं, क्या उसी तरह तिल की फसल के बीजों को भी उपचारित करने की आवश्यकता होती है?
0: कोई भी बीज जो हम बोने जा रहे हैं वो किसी भी फसल का हो, बिना बीज उपचार किए हुए हमें उसका कभी भी उपयोग खेत में नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, क्या होता है कि बीजोपचार एक बहुत ही सस्ती विधि है जिससे हम बहुत कम पैसे खर्च कर आगे आने वाली बीमारी के प्रति अपनी फसल में सहनशीलता या प्रतिरोधकता विकसित कर सकते हैं। इसीलिए तिल का बीज भी जब आप बोने जा रहे हैं तो इसमें भी मात्र 2.5 से 3 ग्राम दवा, जो थायरम दवा बाजार में आसानी से उपलब्ध है, या कार्बन डाइजम दवा जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, इसका प्रयोग 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे हमें काफ़ी फायदा आने वाली फसल में प्राप्त होता है।
1: कंसाना साहब, जो तिल के बीज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और इनका सही तरह खेत में वितरण हो और सही निश्चित गहराई पर गिरें, इसके लिए कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए?
0: कि साधारणतः जब हम तिल की फसल की बात करते हैं सामान्य जो प्रक्रिया किसान हमारे यहाँ अपनाते हैं वो है छिटकवा विधि। छिटकवा विधि

में हम क्या करते हैं कि बीज को सीधे हाथ से खेत में फैला देते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर चला के या हल चला के उसको जमीन में मिला देते हैं। अगर फसल उत्पादन की दृष्टि से, सस्य विज्ञान की दृष्टि से हम इस चीज को देखते हैं तो निश्चित

0: करने में उनको समस्या आती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उपलब्ध या तो मिट्टी उनके पास जो आसपास खेत की मिट्टी है उसको, या गोबर की अच्छी सड़ी हुई पची खाद जो है उसको, या रेत का उपयोग करके हम 1:20 के अनुपात में, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 1 किलो तिली के बीज के साथ 20 किलो गोबर या 20 किलो रेत को मिलाकर हम उसको सीड ड्रिल के माध्यम से अगर बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी उपज पर उसका काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जहाँ तक बीज की समान वितरण और गहराई की बात है, तो अगर हम सीड ड्रिल का प्रयोग करके बुआई करते हैं, कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, और उसको 3 सेंटीमीटर गहराई पर अगर ज़मीन में बोते हैं तो उससे हमें काफ़ी अच्छी उपज और फसल प्राप्त होती है।
1: ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो तिलहन की फसल है वहीं पर लेते हैं जहाँ पर भूमि अनुपजाऊ होती है, लेकिन अगर हमारे किसान भाई अगर इसे व्यवसायिक दृष्टि से फसल बोएं तो अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं, तो इसके लिए खाद कितनी प्रयोग करनी चाहिए?
0: साधारणतः तिल की फसल हम उन क्षेत्रों में लेते हैं जो असिंचित क्षेत्र हैं या जहाँ पर पानी का हमारे पास कोई निश्चित साधन नहीं है। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में जब हम तिली की बात करते हैं तो उसके लिए हमें लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, साथ ही 30 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता हमें तिल की फसल के लिए होती है। इसके लिए DAP और यूरिया से लगभग हमें 40 किलोग्राम DAP की आवश्यकता होगी, और उसके अतिरिक्त 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जो एक महीने की खड़ी फसल में अगर पानी गिरता है तो पानी के बाद हम खड़ी फसल में 10 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें बुरकाव कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपने फसल के जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम किसी भी जगह से अगर लगातार फसल का उत्पादन लेते रहें और वहाँ से पोषक तत्वों का दोहन करते रहें, और बदले में अगर उस ज़मीन में हम उर्वरकों का प्रयोग न करें, तो निश्चित तौर पर वहाँ अच्छे उत्पादन की आशा आने वाले समय में नहीं रह जाती।
1: पौधे को पोषक तत्व जब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे तब तक उसकी बढ़वार भी अच्छी नहीं होगी और उससे उत्पादन लेना भी संभव नहीं है। तो कंसाना साहब, अंत में हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें और क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे जो तिल की फसल उगाना चाह रहे हैं उन्हें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले?
0: खरपतवार भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जो किसी भी फसल में, खासकर खरीफ की फसलों में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। इसलिए हमें तिल की फसल को भी अगर हम व्यावसायिक उत्पादन की दृष्टि से देखें, अच्छे आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखें, तो हमें निश्चित तौर पर अपनी तिल की फसल को भी खरपतवार रहित रखना चाहिए। खरपतवार की जो क्रांतिक अवस्था है तिल के लिए, ये लगभग 40 से 50 दिन की अवस्था तक अगर हम उनको खरपतवार रहित रखते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए किसान भाई यांत्रिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें डोरा चलाना या कोल्पा चलाना या खुरपी से निदाई करना या हाथ से निदाई करने का प्रयोग भी किया जा सकता है। साथ ही जिन परिस्थितियों में हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ बाजार में कई खरपतवार नाशी रसायन उपलब्ध हैं। पेंडीमेथिलिन दवा है जिसको हम लगभग 3.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर बुआई के तुरंत बाद प्रयोग करते हैं अंकुरण पूर्व, तो हम अपने खेत को काफ़ी दिनों तक खरपतवार रहित रख सकते हैं और तिल का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: कंसाना साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को तिल की कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियाँ हैं और किस तरह तिल की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इस विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद।
2: भैया अभी अपन सुन रहे थे भेंटवार्ता, जाकर विषय था तिल की उन्नतशील प्रजातियाँ, और जाके बारे में आपको बता रहे थे BS कंसाना और भेंट करता थे सोहन सिंह। भैया इस भेंटवार्ता के माध्यम से अपन ने जाना ना कि अपन जो तिल की बुवाई का जो तरीका है वो चटकमा विधि से अगर कराते हैं तो बाद से अपन उत्पादन उतना अच्छा नहीं ले सकते, लेकिन जब भेंटवार्ता में अपन को बताया गया कि कतार में अगर अपन बीज बोएंगे तो फसल में अपन उत्पादन भी अच्छो ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने किसान भैयारों को जब भेंट वार्ता से लाभ हुई होगा। भैयारों अपन साथ ही साथ जो चर्चा कर रहे थे वो अपन चर्चा कर रहे थे जैविक खेती के बारे में। भैयारों जैविक खेती से क्या है कि अगर अपन अपनी खेती किसानी में जैविक खादों को अगर अपन उपयोग करेंगे तो बामे का है कि जो अपनी खेती की ज़मीन है बामे जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो जाते हैं, तो कई जगह अपन को जो सिंचाई है वहाँ में अपन को कम खर्चा लगाता है और इससे अपनी जो लागत है वो भी कम हो जाता है। और जैविक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखकर टिकाऊ खेती बना सकता है, मिट्टी को स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही साथ अपन फसल चक्र को

उपयोग कर सकते हैं, मिश्रित खेती को उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कहा है कि अपनी एक ही फसल पर निर्भरता कम हो जाएगी और अपन अलग अलग फसलों से अलग अलग उत्पादन ले सकते हैं। जाके अलावा जो अपनी फसल की डंठल हैं, पत्तियां हैं और अन्य जो अवशेष हैं, बिने अपन कहा है कि जला देते हैं, बाय अपन जलाने की बजाय अपन अपनी जो खाद बना ले माँ की, तो बाय अगर अपन अपने खेत में उपयोग करेंगे तो अपने को पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और अपनी खेती को एक अच्छी जैविक खाद मिल जाएगी। और साथ ही साथ अपन अपनी खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को व्यवसाय कर सकते हैं। अब पशुपालन के व्यवसाय से अपन को कहा है कि बाहर से जो गोबर मिलेगा तो बाय अपन जैविक खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब जब अपन जैविक खाद को उपयोग करेंगे तो मिट्टी, पानी और जैव विविधता को संरक्षण लंबे समय तक हो जाएगा। तो जैसे कहा है कि अपनी जो खेती किसानी है वो टिकाऊ खेती हो जाएगी। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तक मनोरंजन हो जाए तो सुनत है जी लोकगीत।

भैया रहो, अभी अपन ने सुनो जो लोकगीत, और भैया रहो अपन देख ही रहे हैं कि बरसात को मौसम चल रहा है, तो अपन का करें कि अपने आसपास जो है वो साफ़ सफाई जरूर रखें। जो अपनी नालियां हैं, बिन में पानी अगर रुक रहा है तो बिन्हें अपन साफ़ करें, और अपने आसपास को कचड़े को सही और उचित रूप से निपटान करें। भैया रहो अगर ये पानी जमा रहेगा तो जहाँ से कहा है कि मक्खी और मच्छर फैलेंगे, तो बिन से अपन को कई प्रकार की बीमारियां हो सकते हैं। तो अपने जो हैंडपम्प हैं, कुआँ हैं, नालियाँ हैं, बिन्हें अपन साफ़ सुथरा रखें, और अपने यहाँ पशु अगर पले हैं तो बिन्हें भी अपन साफ़ सुथरी जगह पर रखें, और बिन से निकलने वाले जो कचरा है, गोबर है, बिन को अपन उचित निपटान करें। जहाँ से कहा है कि अपन स्वस्थ रहेंगे, और अगर स्वस्थ रहेंगे तो अपन को जो खर्चा है वो बीमारियों पे बिल्कुल नहीं होगा। तो अपन को इन बातों को जरूर ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी अपन को ये समझाना है। भैयारों अब हो गई चलबे की बेला, तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन

और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट DM, उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2 स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है।
मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया।

है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूँ लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोप

तोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के चार सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जन भागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:15 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाले अहम निर्णय लिए, जिनसे देश का खेल तंत्र, सामूहिक आर्थिक तंत्र, किसान कल्याण और सिंचाई तंत्र को गति प्राप्त होगी। आइए इन निर्णयों पर व्यापक चर्चा के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा जी का। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: जैसा कि हम जानते हैं, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और बहुत अहम फैसले लिए गए, जो हमारी इकोनॉमी के जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको लाभान्वित करेंगे। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं आज की अनाउंसमेंट को, ये जो गुलदस्ता आया है निर्णयों का, इस पर आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया क्या होगी?
3: इसके चार हिस्से हैं। एक हिस्सा आपका किसान से जुड़ा हुआ है
2: जी।
3: एक हिस्सा जो जलाशय हमारे हैं, जिनके ऊपर गुंजाइश है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए संभावनाएं तलाशी गई है। तीसरा जो विषय है कि हमारे लिए ईंधन आज के समय में ऊर्जा को लेकर के, और खासतौर पे खाड़ी संकट के बाद ऊर्जा को लेकर के नई चर्चा शुरू

0: हुई है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। और चौथा, अभी जैसे राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, उसमें और कैसे हम अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सके, उसके लिए खेलो इंडिया जो योजना है उसके तहत नए प्रावधानों की बात की गई है। मुझे लगता है कि आप अगर पूरे तंत्र को देखिए, हम लोग अर्थतंत्र की जब बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जहाँ पर कृषि एक अहम हिस्सेदारी है, हम लोग कहते हैं कि 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति कृषि पर निर्भर है, उनके लिए जो योजना है जो कि 2026-27 यानी कि इस वित्त वर्ष में खत्म हो रही थी, उसे 2031 तक के बढ़ाने की बात है, यानी कि किसानों के लिए आपने जो है अतिरिक्त संसाधन का इंतजाम कुछ और समय के लिए कर दिया है। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो सौर ऊर्जा का मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको उसके लिए कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है। इससे हमारे देश में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे ईंधन की बात है, पेट्रोल डीजल की हम लोग बात करें, गैस की बात करें, वहां पर आंकड़ों का क्या योगदान होता है, वो इस तीसरी जो बड़े फैसले हैं समुद्र मंथन का, उसका जुड़ा हुआ है। और खेल के लिए जो है इस समय में जितने प्रोत्साहन देने की जरूरत है, वो मुझे लगता है। तो एक पूरा का पूरा तंत्र जो है उसको विकसित करने की योजना है, बजाय कि हमें किसी खास हिस्से के ऊपर विशेष ध्यान।
1: बिल्कुल, सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजंस है जो किसी भी नागरिक के लिए या हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को लाभान्वित करते हैं। अगर हम सबसे पहले, जैसे आपने भी जिक्र किया, जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसका जो एक्सटेंशन किया गया है, जैसा आपने कहा कि 65% लोग एग्रीकल्चर में लिप्त है, खासकर जो छोटे और सीमांत किसान है, उनके लिए इसका क्या महत्व रहा है इस योजना का, और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है, ये उनके लिए कितना क्रूशियल रहेगा?
0: इसके पहले मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा। 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, और उस समय एक बड़ी आलोचना ये की गई थी कि अंतरिम बजट में आप कोई बड़ी घोषणा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अंतरिम बजट में अगर सरकार बहुमत में है, सरकार के पास विश्वास मत है और चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो कोई भी बड़ी घोषणा की जा सकती है, जो कि 2019 के अंतरिम बजट में की गई। दूसरी जो उस समय बात कही गई कि 6,000 रुपया से किसानों का क्या होता है, आप 6,000 रुपया मतलब 3 किस्तों में आप 2,000 रुपये देंगे, लेकिन आप ये देखिए कि इस योजना को लागू हुए 2019 से आज हम लोग 2026 में हैं, नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि 85% किसानों ने कर्ज लेने की जरूरत में कमी की है, यानी कि जो बाजार के स्रोत होते हैं या संगठित है या असंगठित है, उनसे जो उनको कर्ज लेना पड़ता था, उसमें कमी आई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें फौरी तौर पर जब पैसे की जरूरत होती है, वो असंगठित क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां पर ब्याज की दर काफी ज्यादा होती है, चक्रव्यूह में फंसते हैं। तो आप अगर ऐसे लोगों को फसल के ठीक पहले, जो सत्र है, चाहे रबी की हम लोग बात करें, खरीफ की बात करें, उसके ठीक पहले अगर 2,000 रुपये का उनको एक नगद सहायता दी जाती है, तो उसका एक बहुत महत्व होता है। तीसरी बात जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, आंकड़े पे 11 करोड़ किसानों को इसका फायदा हो रहा है। 11 करोड़ किसानों को अगर आप 2,000 रुपये देते हैं एक किस्त में, तो वो कितना ज्यादा, आप देखेंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था में नकदी का संचार कैसे होता है। आप कह सकते हैं एक किसान को 2,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उस गांव में अगर 10 किसान हैं, यानी कि 20,000 रुपये उस गांव में खर्च होने की संभावना बनती है। अभी तक जो हमने देखा है, लगभग 3,10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, और आगे भी 3,50,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई है। यहां पर यह भी बार बार चर्चा होती रही कि क्या हमें 6,000 रुपये को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई की दर बढ़ी है, उनकी जरूरतें बढ़ी है, तमाम चीजों की लागत में बढ़ोतरी हुई है। तो एक मुद्दा ये जरूर है कि इसको क्या बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल सरकार अभी उस पर कोई फैसला नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 वर्षों का जो बढ़ाया जाना है और 3,50,000 करोड़ रुपए का जो अर्थव्यवस्था में संचार होना है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था को व्यापक फायदा पहुंचाएगा।
1: तो आपको लगता है ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ किसानों को डिजिटल इंडिया के द्वारा पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत, एक तरह से ये कोलैबोरेशन भी कही जा सकती है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, जहां वो जैसा कि नाम में ही निहित है, सम्मान दे रही है हर किसान को कि आपका कितना बड़ा योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में।
0: तो अब अगर आप एक तरफ देश के विकास की बात करें, विकास दर को बढ़ाने की बात करें, 2047 तक विकसित देश बनने की बात करें, और देश की एक बड़ी आबादी जिसमें निर्भर है, जिस पर निर्भर है, उसकी बेहतरी की बात ना करें, तो आपके लिए उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ कृषि की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसान क्या कृषि के इतर कुछ और भी जो गतिविधियां हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं या पशुपालन है,

0: उनके ऊपर वो कितना काम कर रहे हैं, उसमें उनको कितना फायदा, क्योंकि साल में आपने दो बार तो फसल बुआई कर दी, कटाई कर ली, बीज का समय उसमें क्या करेंगे? तो आप बीज के समय के लिए अगर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की जाए, वहां पर आपको कैसे इसमें मदद मिल सकती है? मुझे लगता है कि ये समग्र एक व्यवस्था है जो कि किसान और किसानी दोनों की बेहतरी की बात कर रहा है।
1: बिल्कुल, अगर हम आज जो अप्रूव हुई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की बात करें, 5,070 करोड़ रुपए की लागत है और इसमें बात हो रही है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स के विकास की, जिसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स होंगे। थोड़ा सा हमें बताएं कि सरल शब्दों में कि ये क्या योजना है।
0: आपको बताएं कि देश की जो सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है NTPC, उन्होंने अपने कई परियोजनाओं में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए। वहां पर उनके पास ऑलरेडी जो है वो जल स्रोत उपलब्ध है, उस जल स्रोत का वो कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि जल स्रोत उनके लिए जो राख है उसको ठंडा करने में, उन सब चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर और क्या कोई इस्तेमाल हो सकता है? अब यही व्यवस्था पूरे देश भर में जितने भी जलाशय हैं, जितने भी नहर हैं, जितने भी औद्योगिक पार्क में जो जल स्रोत हैं, उनके इस्तेमाल करने की बात है। और मैं बताऊं कि फ्लोटिंग सोलर पैनल एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके लिए सबसे सस्ती दर पर बिजली जो है, अब मैं आप कहेंगे कि सबसे सस्ती बिजली सौर ऊर्जा से, शायद कई लोगों को लगेगा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सौर ऊर्जा महंगी कही जाती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जमीन की जो लागत है वो इसमें आपको नहीं चुकानी है। दूसरा ये है कि कच्चे माल की कोई लागत नहीं चुकानी है। आपके पास आपने एक पैनल लगाया, आपके लिए प्रकृति ने जो आपको कच्चा माल दिया है उसका इस्तेमाल करना है, जिसके लिए आपको प्रकृति को कुछ नहीं चुकाना है। तो आप उन सभी चीजों को अगर घटा देंगे तो वास्तविक जो लागत होगी उसमें कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। 5,000 मेगावाट की जो बात की जा रही है, और हमारे यहाँ चूंकि अभी तक जो है वो ताप पे निर्भरता बहुत ज्यादा है, आगे भी रहेगी, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, लेकिन हमें विकल्प के तौर पे भी चलना होगा क्योंकि हमारे यहाँ मांग बढ़ रही है। अभी जैसे इस मौसम में आप देखिए कि बारिश होती है, फिर बहुत ज्यादा उमस बढ़ जाती है, जहाँ पर बिजली की मांग काफी ज्यादा है। आपने एक चीज गौर किया होगा कि बीते कुछ सालों में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रिपिंग हुई हो। जितनी जरूरतें रही उतनी जरूरत पूरी की गई, और ये जरूरतें और बढ़ेंगी। तो इनका इंतजाम आप कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये एक उस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम।
1: ये बहुत ही नवाचारी योजना है और इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जब उसके बारे में बताया, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में।
1: और अब रुख करते हैं तीसरे बहुत बड़े फैसले का, समुद्र मंथन जो योजना जिसको आज अप्रूवल मिला कैबिनेट से, जो नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम बताई जा रही है, इसमें 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बात है। कैसे देखते हैं आप इस स्कीम को? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। ये किस तरह से हमारे जो एनर्जी इकोसिस्टम है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, खासकर जो हाल में जिस तरह के ग्लोबल चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं, तो ये कितनी आपको इम्पोर्टेंट स्कीम लगती है? इसके प्रमुख फीचर्स क्या हैं?
0: अगर आप पश्चिम एशिया में जो लड़ाई की स्थिति है उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो है वो पाबंदियां लगाई गई कि आप रसोई गैस के इस्तेमाल में किस तरीके से, फिर बात ये भी है कि पेट्रोल डीजल के मामले में हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए यानी कि कच्चा तेल जो चाहिए वो कितना ज्यादा आपके पास उपलब्ध है। तो अब इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए चलें, और कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में बहुत कुछ छिपे हुए हैं जो हमें अंदाजा नहीं है, तो इसीलिए जो योजना बनाई गई है समुद्र मंथन की जो 84,000 करोड़ रुपए के, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से की अगर हम बात करें तो आंकड़े, क्योंकि आप अचानक से कहीं जा करके आप कहते हैं ना कि वहां पे खुदाई नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में ये स्थिति है, इतनी संभावना है, तब जाकर के आप उसमें वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीगत निवेश होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 जगह जाकर के आपने निवेश कर दिया और 10 जगह में से कहीं कुछ नहीं निकला।
1: हमारी कोस्टलाइन बहुत बड़ी है तो पोटेंशियल भी बहुत होगा।
0: बिल्कुल, तो दो हिस्से, पहला हिस्सा है कि आंकड़े जुटाने के मामले में और दूसरा हिस्सा जो है एक्सप्लोरेशन के मामले में है। और इन दोनों को अगर आप मिला करके देखें तो अंततः इसका फायदा यह है कि जो हमारे पास अभी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1 ट्रिलियन इक्विवेलेंट जिसको हम लोग कहते हैं, अब वो 1.6

0: ऑस्ट्रेलियन इक्विवेलेंट की बात है। क्या ये हमारी जरूरतों के हिसाब से काफी है? बिल्कुल नहीं है, इससे मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम 88% कच्चा तेल हमने आयात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी भी कमी आती है, अगर 2% की भी कमी आती है, 4% की भी कमी आती है, तो आपको इसका फायदा विदेशी मुद्रा के तौर पर होगा। विदेशी मुद्रा की जो जरूरतें होती हैं उनमें कमी आएगी और वो आपके रुपए पर दबाव को कम करेगा।
1: अश्विनी वैष्णव जी ने हमें समुद्र मंथन के बारे में, इस योजना के महत्व के और लाभों के बारे में जो बताया, आइए वो भी सुनते हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम। एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत का जो पोटेंशियल है देश का, उस पोटेंशियल को इसमें यूटिलाइज करने का पूरा प्लानिंग है।
1: सो शिशिर जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, हमारे किसान कल्याण को लेकर। साथ ही जैसा आपने कहा था कि एक और पहलू खेलो इंडिया स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम को असिस्टेंस के तौर पर जो कुल 36,441 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये आप देश के व्यापक विकास, एक कहें समावेशी विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको?
0: अभी राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं और आपने देखा कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफ़ी सुधरा है, चाहे वो हम लोग ओलंपिक की भी बात करें, एशियाई खेल आने वाले हैं, वहाँ पर भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो बीते कुछ समय में जो बेहतरी दिखी है उसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाए रखना है, तो ये जो 36,000 करोड़ रुपये की जो योजना है, दरअसल जो हमारी खेल की जो नीति है वो उसको ध्यान में रख करके तैयार की गई, और इसका मकसद ये है कि जो बेहतर है उनको और श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, उनमें और श्रेष्ठता की बात कैसे ली जाए, कैसे उनको मदद दी जाए। मुझे लगता है कि हम जब एशियाई खेल होगा या आने वाले समय में हमारे देश में राष्ट्रमंडल खेलों का भी आयोजन किया जाना है अहमदाबाद में, तो उसका भी फायदा जो है ये जो संसाधन दिए गए हैं कैबिनेट के जरिए वो उनको मिल पाएगा।
1: शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। आज जो कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसले हैं उनके क्या व्यापक फायदे होंगे हम सबको, ये रेखांकित करने के लिए
0: जी धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी से आप अपना समय मिलाइए, 8:30 और 5 सेकंड सुबह हैं और अब आपके लिए पेश है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं पाकीज़ा फिल्म का ये गीत। बोल लिखे हैं कैफ भोपाली ने और संगीत गुलाम मोहम्मद का है।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, जिसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है मस्ताना।

और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं शकील बदायूनी की लिखी ये गीत रचना। संगीतबद्ध किया है रवि ने, आवाज मोहम्मद रफी की है और फिल्म का नाम है घराना।

0: घराना फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समाचार संध्या थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघा

0: हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
0: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
0: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
0: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना के

0: अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
5: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है. वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है. आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में. टोटल 5

0: के बालाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से महानदी और उसकी मावे नदियों में तुगयानी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा के 15 जिले मुतासिर हैं, जहां गांवों, सड़कों और हजारों हेक्टेयर काश्त की जमीनों के सैलाबी पानी में डूब जाने से रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। हीराकुंड बांध के 22 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिनसे सैलाब के पानी का अखराज हो रहा है। हीराकुंड बांध में पानी की सतह 625 फीट से ज्यादा हो गई है। बांध में कसीर मकदार में पानी की आमद लगातार जारी है, जिससे मजीद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इन हालात में महानदी के तास में शदीद सैलाब के खदशात बढ़ गए हैं। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कोइंझार जिलों का फिजाई दौरा करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। भद्रक में एहतियाती कदम के तौर पर सभी स्कूल बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: गुजरात में रेड अलर्ट के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनूबी और वस्ती खित्तों में रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ा है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि बारिश से मुतासिर जिलों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा और सूरत समेत रियासत के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता है। खेल में भारत ने पहली बार सोने का तमगा जीता है। स्मिता ने कनाडा की क्वेंच को खातिन के 48 किलोग्राम जुमरे में 2-1 से हराया। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पांघल अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गए हैं, जिससे भारत के लिए कम से कम चांदी के 2 तमगे यकीनी हो गए हैं। वहीं अंकुश पांघल ने आज हुए सेमीफाइनल मैच में कनाडा के जोशुआ ओफरी को 5-0 से शिकस्त दी। इस तरह पांघल मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक 18 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4, चांदी के 9 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेल जगत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, इस विषय पर डॉक्टर अभिनव साठे से मनीष गजभिये की भेंटवार्ता।

0: खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोतो, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक बहुत ही भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन तथा खिलाड़ियों के खेल में आ रही मानसिक तथा शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी क्या है और यह किस प्रकार खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित होती है, इन सभी विषयों की जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर अभिनव साठे जी को। आप एसोसिएट प्रोफेसर और क्लिनिकल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी राजीव गांधी कॉलेज में पदस्थ है तथा पूर्व में इंडियन मेन सीनियर हॉकी टीम का हिस्सा भी रहे हैं। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मनीष जी।
0: सबसे पहले अभिनव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी वास्तव में क्या है और यह सामान्य फिजियोथेरेपी से किस तरह से भिन्न है?
1: जी सर, इस प्रश्न का उत्तर मैं दो भागों में आपको देना चाहूंगा। फिजियोथेरेपी, जैसे आपको पता है, एक अपने आप में एक संपूर्ण विधा है जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में काफी वर्षों से, और कह सकते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट पिछले 80 वर्षों से ग्लोबल स्टेज पर इसका काफी हुआ, उसी का एक ब्रांच जिसको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी या स्पोर्ट्स साइंसेस कहा जाता है। यह वह ब्रांच है जिसमें खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ियों का डेवलपमेंट हो गया, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उसके मैनेजमेंट के दौरान, उनके ट्रेनिंग के दौरान एवं उनके ग्राउंड पर खेलने के दौरान, जब उन्हें कोई चोट लगती है या चोट लगने के बाद कोई मेजर सर्जरी कराने के उपरांत जब उनको वापसी करनी होती है, तो यह विधा में स्पेसिफिक कैसे ट्रेनिंग देके

0: कैसे उनको ट्रीटमेंट देके वापस लाया जाता है, इस ब्रांच को स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कहा जाता है। और हमारे भारतवर्ष में जैसे देखा जाए तो एक 4.5 साल के कोर्स के बाद 2 वर्ष का स्पेशलाइजेशन होता है जो करने पर फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट कहलाता है।
1: अभिनव जी, अगर मान के चले कि खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाता है, किसी तरह से चोटग्रस्त होता है, तो उस कंडीशन में क्या भूमिका रहती है फिजियोथेरेपिस्ट की?
0: जी सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करके बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं। मान लीजिए जैसे रग्बी खेल है, फुटबॉल खेल है, एक हद तक वो भी कॉन्टैक्ट हो जाता है कई बार खिलाड़ियों का, और एक खेल है बैडमिंटन, तो जैसे कि नेट के उस पार या इस पार खिलाड़ी रहता है। बट इनमें जो इंजरीज खेल के दौरान होती हैं और एक पर्टिकुलर समय पर हुई इंजरीज को हम अक्यूट इंजरीज कहते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट कंप्लीटली एक फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर रहता है। अगर कोई ऐसी अंदरूनी चोट लगी है तो उसको ऑन द फील्ड मैनेज करना, आगे किसी विशेषज्ञ के पास भेजना या एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसमें भी एक थेरेपिस्ट का रोल रहता है क्योंकि वही एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है जिससे वो बता पाता है कि इंजरी कितनी सीरियस है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के होने के कारण ऑन फील्ड उसका असेसमेंट और ऑन फील्ड ही उसका मैनेजमेंट हो पाया। और अगर मैं पिछले अपने उदाहरण के ऊपर जाऊं तो अगर खिलाड़ी को कॉन्टैक्ट के दौरान कोई चोट लग गई, तो जैसे रक्तस्राव हो गया या अंदरूनी ऐसी चोट है जो उसको आगे नुकसान पहुंचाती है, तो उसके मैनेजमेंट में भी रोल बहुत प्ले करता है। और अगर इस सवाल के जवाब का अंत में दूं तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यह है कि जो एक इंपॉर्टेंट गोल्डन आवर या एक जो टाइमलाइन है जिससे कम परेशानी खिलाड़ी को होगी, उसमें थेरेपिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
1: निश्चित तौर पे आज के युग में जब हम बात करें स्पोर्ट्स साइंस की, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट के रोल को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे बात करते हैं रिहैबिलिटेशन के खिलाड़ियों के, तो खिलाड़ियों के पुनर्वास की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है, कैसे की जाती है, कृपया इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जैसे कि आपने रिहैब या पुनर्वास के बारे में बोला, तो यह अपने आप में ही एक फेज वाइज या हम इसको कहें टेलर्ड प्रोग्राम हम इसको कहते हैं, जो कि स्टेजेस वाइज रहता है। अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो अगर हम एक खिलाड़ी की चोट के बाद उसके हीलिंग प्रोसेस को अगर हम पकड़ें, तो वो हर चोट की अलग अलग होती है। बट जो रिहैबिलिटेशन जनरली डिसाइड होता है, हम उसको एक ग्लोबली, एक ओवरऑल हम महीने भर का लेके अगर हम चलें, तो हमारा कुछ फेज़ हफ्ते का रहता है, कुछ फेज़ हमारा दिन का रहता है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं, हम इसको अक्यूट फेज़, सब अक्यूट फेज़, लेट फेज़ एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स। तो हमारा रिहैब में या पुनर्वास में सिर्फ ये नहीं है कि हम खिलाड़ी को बस ठीक कर दें या खिलाड़ी खेलने लायक हो जाए, पर हमारा दायित्व यह है कि जैसे वह चोट लगने के पहले खेल रहा था, उसी क्षमता से, उसी तरीके से वो चोट से रिकवरी करने के बाद वापस जब आए, तो वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स उसका जस्ट एज द प्री इंजरी लेवल वो होना चाहिए। तो ऐसा फेज डिवीजन करके हमें खिलाड़ी को वापस लाने की कोशिश करें।
1: अभिनव जी, किसी भी खिलाड़ी को फिट बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट किस प्रकार की ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करवाते हैं?
0: फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है। हमारी विधा में इलेक्ट्रोथेरेपी एक रोल प्ले करती है, एक्सरसाइज थेरेपी रोल प्ले करती है, काफ़ी हद तक कई खिलाड़ियों में, मैं इसमें इस टर्म का उपयोग करना चाहूँगा, बायोमैकेनिक्स, मतलब एक एक्टिविटी को करने का तरीका वो कई बार बिगड़ जाता है, या जिसको हम पैथोमैकेनिक्स या ऑल्टर्ड बायोमैकेनिक्स कहते हैं, तो उसको भी करेक्शन करने में हेल्प होता है। तो यहीं से हमारे इस सवाल का जवाब है कि करेक्टिव एक्सरसाइज देना, रिहैबिलिटेटिव एक्सरसाइज देना, कुछ स्ट्रेचिंग्स देना, अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, लचीलापन कम हो गया है, तो उसके स्पेसिफिक, अगर हम इसको ऐसा कहें कि हम पेशेंट को एक अच्छे तरीके से असेसमेंट करके, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके, उससे डिटेल्ड में बात करके, उसके जो साइन सिम्टम्स हैं उनको समझ कर, फिर हम गोल स्पेसिफिक या हमारा जो आउटपुट हम चाहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर, अगर इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के स्वरूप बताना चाहूँगा कि जैसे जिमनास्ट है, तो उसके केस में हम चाह रहे हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे, अगर कुछ परेशानी हुई भी है मान लीजिए मांसपेशियों में, तो वो बेहतर हो, तो हम फिर उसको फ्लेक्सिबिलिटी स्पेसिफिक देंगे। और वही अगर एक भरोत्तोलक है जो वेट लिफ्टर है, उसको पावर की ज़्यादा नीड है, तो हम उससे रिलेटेड फिर उसको एक्सरसाइज देंगे। तो इसी तरीके से यह होता है।
1: अभिनव जी, चोटों से बचाव के लिए खिलाड़ी को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: अगर खिलाड़ी के स्तर पर हम देखें तो प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि आपने कहा कि चोट लगे ही ना, तो देखिए खिलाड़ियों के साथ चोट का तो चोली दामन का साथ है, पर अब क्योंकि मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस, मॉडर्न स्पोर्ट्स

0: थेरेपी। और अब क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ एक अकेला खिलाड़ी नहीं, उसका कोच, उसका कंडीशनिंग कोच, उसके जो पीयर ग्रुप रहता है, तो आजकल हम जनरली एक प्रिवेंटिव मेजर्स या उनकी जो ट्रेनिंग है उसी के दौरान एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर हम काम करते हैं। जैसे एक मैंने जिमनास्ट का एक आपको एग्जांपल दिया, तो हम ले लें, हमें पता है कि जिमनास्ट के एंकल पे या जो एडी जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा जोर आता है, उसी के ऊपर मोस्ट उसका स्पोर्ट्स डिपेंड करता है।
1: जी जी।
0: तो उस केस में अगर हम देखें कि हमें पता है कि एंकल उपयोग हो रहा है, चोट तो होगा, बट इनिशियली हम उनको बैलेंस एक्सरसाइज, उस रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, ये एज अ प्रिवेंशन हम करें। फिर कुछ हमारे विधा में टेपिंग नाम की चीज होती है, जिससे हम कुछ विशेष टेप से, मेडिकेटेड टेप से उस एरिया को हम ऐसा फिक्स कर देते हैं कि वो अपनी एक्टिविटी भी कर पाए, और मान लीजिए अगर एक स्तर के बाद वो गलत तरीके से मुड़ रहा है या मोच खा रहा है तो कम से कम नुकसान हो। तो इस तरीके से हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करते हैं।
2: अभिनव जी, क्या केवल प्रोफेशनल खिलाड़ी को ही फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है या आम खिलाड़ी भी इसका लाभ ले सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल सर, आज के समय में आप देख रहे हैं हर कोई फिट रहना चाहता है, हर कोई जो फिट इंडिया का संदेश है वो फैलाना चाहता है, तो जरूर फिजियोथेरेपिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने हाल फिलहाल के सालों में देखा होगा लोगों का फिटनेस के प्रति, एक्सरसाइज के प्रति रुझान बढ़ा है। आए दिन हर कुछ महीनों के बाद किसी एक पर्टिकुलर संडे किसी विशेष दिन को लेके मैराथन्स हो रही हैं। आयरन मैन में जो भारत की तरफ से आज के समय जो सबसे टफ रेसेस में से माना जा रहा है, हम उसमें देखते हैं ना सिर्फ स्पोर्ट्स खिलाड़ी, कई प्रोफेशनल डॉक्टर्स, कई प्रोफेशनल इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब भी भाग ले रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली या अंत में कहें कि एक खिलाड़ी हो चाहे एक आम इंसान हो, उसका बॉडी तो वही है और उसका इंजरी या वो उसी ट्रेनिंग या वो उसी साइकिल से गुजर रहा है, तो इंजरी होना बहुत स्वाभाविक है। तो चाहे वो एक खिलाड़ी हो, चाहे वो रिक्रिएशनल जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी खिलाड़ी के रूप में या किसी खेल में भाग लेता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट कहीं ना कहीं उनको या तो इंजरी कम होने में मदद करता है, और मान लीजिए हो गई तो रिकवरी में बहुत ज्यादा मदद करता है।
2: अभिनव जी, अब जैसे बात करें नई तकनीकों की, तो आज के युग में नई तकनीकें और उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है, और आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमसे बात करी थी स्पोर्ट्स साइंस की, तो स्पोर्ट्स साइंस क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह से आजकल किया जा रहा है खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए?
0: स्पोर्ट्स साइंस का अगर मैं कहूं, क्योंकि मेरा जो पीएचडी है वो खुद स्पोर्ट्स साइंसेज एंड मेडिसिन से है, तो मैंने उसको काफी इनडेप्थ जाके समझा है, पढ़ा है और उसको एक्सपीरियंस किया है। तो आज के युग में कोई भी खिलाड़ी है सिर्फ कोच का ट्रेनिंग हो या उसको सिर्फ आहार की बात हो, ऐसा नहीं है। मैं इस प्रश्न का थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। तो स्पोर्ट्स साइंस को हम अगर डिवाइड करें तो मेजर तीन चार विधाओं में उसको डिवाइड किया जाता है, जो कि है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी नंबर वन, जिसमें उसकी चोट से संबंधित या चोट से वापसी से संबंधित बात होती है। इसी में एक पार्ट आ जाता है स्पोर्ट्स मेडिसिन, तो जब डॉक्टर स्पेसिफिक या सर्जन स्पेसिफिक हमें नीड, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उसके मानसिक स्वास्थ्य का जैसे मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, उसके आहार से संबंधित जब मैनेजमेंट है, और उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया था स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एवं फिजियोलॉजी, तो शरीर के अंदर क्या चल रहा है वह उसके खेल के हिसाब से बराबर है कि नहीं, तो ये जो चारों पांचों सब टाइप्स हैं या उपसंकाय जिसको हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स साइंस के, ये मिलकर एक खिलाड़ी को अल्टीमेटली वो जो पोडियम फिनिश रेडी, देखिए पार्टिसिपेशन अपनी जगह है बट जब हम पोडियम फिनिश की बात करते हैं, और हमने देखा है हमारे देश में जो बदलाव देखे हैं कि हमने अब सिर्फ भाग ही लेना नहीं, हमने मेडल लाना भी और नंबर्स बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स साइंस ने बहुत बड़ा रोल उसमें अदा किया है और जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं।
2: अब जैसे आपने बात करी थी अभी मानसिक स्वास्थ्य की, तो अब मानसिक स्वास्थ्य और फिजियोथेरेपी के बीच में क्या कोई संबंध है?
0: अब बिल्कुल सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया सर, बहुत ही जरूरी है इस पे बात करना। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एक वो इंडिविजुअल रहता है जो सबसे ज्यादा समय एक खिलाड़ी के साथ ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के बाद व्यतीत करता है, उसके इंजरी मैनेजमेंट या उसको ट्रेनिंग के दौरान किसी ना किसी तरीके से मदद करने पे। और चूंकि वो अपने पढ़ाई के दौरान भी समझता है कि एक खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपने लिंक की बात कही, एक रिलेशन की बात कही, वो डेवलप होता है। और इससे ही चलकर जो कई बार खिलाड़ी अपने कोच से या अपने परिवार से बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो कि कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस को, उसके खेल पर असर डाल रही है, वो फिजियोथेरेपिस्ट को बताता है। और अब जैसे कि हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ही अपने आप में एक इंडिपेंडेंट विधा उपलब्ध है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, तो वो फिर एक एज अ ब्रिज रोल प्ले करता है. कई बार थेरेपिस्ट खुद खिलाड़ी के साथ उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और फिर कुछ सेशंस, कुछ ट्रेनिंग ड्रिल्स,

0: और कुछ वेज जिससे खिलाड़ी जल्द से जल्द उससे बाहर आ पाए और एक प्रॉपर खेल पाए। इसको एक सर हमारे स्पोर्ट्स साइंस में टर्म यूज किया जाता है, खिलाड़ी से फिजिकली ही फिट होना जरूरी नहीं है, हम इसको होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। खिलाड़ी फिजिकल, मेंटल एवं सोशली जब फिट होगा तब वो एक्चुअल फिट कहला।
1: अगर कोई युवा इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहे तो उसे क्या योग्यता और प्रशिक्षण की जरूरत होती है?
0: जो भी मेरे युवा साथी ये सुन रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, इस विधा में अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो पहले तो आपको 10वीं कक्षा के बाद, चाहे किसी भी माध्यम से आप पढ़े हों, आपको बायोलॉजी ये सब्जेक्ट, तो जिसको हम आज के समय में PCB कहते हैं, वो लेना जरूरी है। उसके उपरांत अब तक तो इस समय ऐसा है कि डायरेक्ट काउंसलिंग से एडमिशन मिल जाता है कॉलेजों में, आगे चलकर ये नीट के अंदर आने वाला है, तो नीट के स्कोर के अनुसार आप पहले स्नातक माध्यम, जिसको हम बैचलर्स डिग्री कहते हैं, वो अभी इस समय 4.5 साल की है, आगे चल के वो 5 क्या होने का प्रावधान आ चुका है, जिसमें 4 साल की पढ़ाई और 6 महीने का उसमें इंटर्नशिप होता है, जिससे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। और फिर इसमें आगे चलकर आप स्नातकोत्तर, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, अलग अलग विधा, संक्षेप में बताऊं तो गायनेकोलॉजी, स्पोर्ट्स, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो और कार्डियो, इसके अलावा भी 2-3 ब्रांच हैं जिसमें जेरियाटिक, जिसमें वृद्ध जनों के स्पेसिफिक ब्रांच है वो, तो इनमें आप स्नातकोत्तर कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। और आगे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें रिसर्च की फील्ड या आप इसमें एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आप PhD भी परस्यू कर सकते हैं। तो यह एक टाइमलाइन है जिससे एक थेरेपिस्ट बन सकते हैं और फिर उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी, और कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते फिट और सक्रिय रहने के लिए आप आम युवाओं को क्या सलाह देना चाहिए?
0: सर, इसमें यही है कि ये भी एक, जिसको अभी मैंने एक शब्द यूज किया था, होलिस्टिक अप्रोच, हमें फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, सोशली हेल्दी रहना जरूरी है। कुछ चीज़ों के ऊपर मैं बात कहना चाहूँगा। फिजिकल में आप अच्छी आदतें रखें, समय से सोएं, व्यायाम करें, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम ही क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ आपके श्वसन से संबंधित ही क्यों ना हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, वो करें। मेंटल पीस रखें आप कुछ अच्छा पढ़ें, आध्यात्मिक की तरफ आपका झुकाव है तो वैसा कुछ रखें। और सोशल, आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके जो दोस्त हैं, वो भी हेल्दी रखें। तो इन तीनों को आप रखेंगे तो फिट इंडिया और फिट युवा के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी जी जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर फिट इंडिया और फिट युवा अवश्य रूप से रहेगा अगर आप दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करते हैं तो। अभिनव जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी विषय पर डॉक्टर अभिनव साठे से की गई यह बातचीत सुनी।
1: इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत, प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। किशोर कुमार की आवाज में सुनिए लहू के दो रंग फिल्म का गीत। गीतकार फारूक कैसर और संगीतकार बप्पी लाहिरी।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में अनजान की लिखी ये गीत रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

0: बदलते रिश्ते फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
2: दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा।
3: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
1: और
3: फिर ले आनंद इस मौसम का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके द्वारा भेजे गए पत्रों की फरमाइश इस कार्यक्रम में हम पूरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। और सबसे पहला खत जो हमें ये मिला है वो है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से ये हमारे श्रोता है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और महेशवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से। ये पत्र है शत्रुधन धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीना जी धाड़े, स्वप्निल, अजय खिरोडकर। और हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का है।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में लीजिए अब सुनिए कृष्णा कॉटेज फिल्म का गीत, जिसे लिखा है नीलेश मिश्रा ने और तर्ज अनु मलिक की है।

इस गीत को सुनना चाहा है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, मोपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, कापशी रोड

अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव वाकड़े, ज्योतिताई वाकड़े, पवन कुमार वाकड़े और समस्त वाकड़े परिवार, साथ ही साथ बलराव वाकड़े, वंदनाताई वाकड़े और खंडवा ग्राम लोहारी से ये पसंद है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे की। कुर्दी रोड मानपुर से विनय वेद, रानी वेद, महिमा वेद और नीतू वेद की।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब अगला गीत हमने लिया है राज फिल्म से, जिसे सुनना चाहा है नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, और तिवरता डाबरीपारा। छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम। डबरीपारा तीव्रता से ये हमारे श्रोता है गजेंद्र प्रताप, सुरेंद्र कुमार, मोहन सिंह और मनमोहन सिंह मरकाम। आप सभी की पसंद पर अलका याग्निक की आवाज में ये गीत है, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रमण का है।

गीत जिसे संगीतबद्ध किया है शांतनु मोइत्रा ने और फिल्म का नाम है परिणीता। इस गीत को सुनना चाहा है इचलकरण जी महाराष्ट्र से, वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य और मिंताशु हजारे ने। गौरीनगर इंदौर से ये फरमाइश मिली है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले की। और पुणे से ये खत हमें मिला है प्रियंका, पंकज, आर्या, जरूड़ बरूड़ से बाबा साहेब वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे का। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर परिणीता फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

जिसे गाया है श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज ने। गीत एक बार फिर स्वानंद किरकिरे का और संगीत प्रीतम का। इस गीत को सुनना चाहा है सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिवाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ने। ये खत हमारे हाथ में है बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू का। और ये फरमाइश है बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने और अर्जुन गवनीकर की।

और कार्यक्रम के अंत में अग्निपथ फिल्म का गीत उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और संगीत अजय अतुल का है। इस गीत को पसंद किया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना ने।

अग्निपथ फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इसमें आप सुनेंगे श्रुति अधिकारी का संतूर पर बजाया राग मधुकौंस।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आपने सुना श्रुति अधिकारी का संतूर पर बजाया राग मधुकौंस। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है।

0: सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. In Jammu and Kashmir, one non-local labourer was killed and another injured in a terrorist attack in the Kilam Devsar area of Kulgam district this evening. Speaking to Akashwani News, IGP Kashmir V.K. Birdi said one labourer died while the other is undergoing treatment at a local hospital after unidentified terrorists opened fire on the duo. The IGP said the area has been cordoned off and a search operation has been launched to trace the terrorists. Meanwhile, Lieutenant Governor Manoj